FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। समाचार के बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल

0: अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई है। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता, श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 का समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का है। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित होगा अभिनेता जगदीप पर। सुबह 10 का समय है पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम का। इसमें सुनिए अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत। सुबह 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 का समय सखी सहेली इस कार्यक्रम का है। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा।

शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 7 बजे कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसके अंतर्गत नाटिका नैहर छूटो जाए। इसके लेखक हैं अरविंद नीमा और निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और रात 9 बजे का समय है।

नैहर छूटो जाए। इसके लेखक हैं अरविंद नीमा और निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 का समय है रंग तरंग कार्यक्रम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान भाग 243।

अत्र ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्र ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 243। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, और अब हम आठवीं कड़ी पर पहुंच गए हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि आपका एक बहुत मशहूर गाना है पंचमदा का 1942 लव स्टोरी, और आपने विशाल भारद्वाज के साथ माचिस फिल्म में है बांसुरी की तान, और जुदाई में है, तो ये इतनी सारी फिल्मों में आपने बांसुरी की तान छेड़ी है, कुछ आप इन गानों से जुड़ी, इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई अपनी नायाब यादें ताजा करें, साझा करें।
2: जी, जुदाई फिल्म में दरअसल नदीम श्रवण का म्यूजिक है
1: जी।
2: और

0: तो मुखड़ा अपने आप में इतना मुश्किल है। और हुआ क्यों कि दो तीन बांसुरी वादक गए वहां और वो बजा नहीं पाए, पीस इतना मुश्किल था
1: जी।
0: तो कैलाश मेहता करके एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो मिनी कॉर्ग में बीन की आवाज निकालते थे, उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। और उसमें कुछ टापू ब्रदर्स बोलते हैं
1: जी,
0: एक टापू खान तबला प्लेयर है और एक टापू ब्रदर जो दूसरा भाई एकोडियन प्लेयर है, तो जो दूसरा भाई है वो आया हुआ था। तो उनके सामने एक ऐसा एक होता है कि हिंदुस्तान की लाज कौन रखे, तो बात अब देश पे आ गई। तो कैलाश ने कहा वो रोनू मजुमदार को बुलाओ, वो ठीक कर देगा सबको।
1: क्या बात है।
0: वो कैलाश ने पता नहीं, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, नीचे से फोन किया, तू करके ही बात करता था। तू कहाँ है? मैं बोला कैलाश भाई तू घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आजा जल्दी सुदीप स्टूडियो में, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, और तू बता दे इन लोगों को कि तू क्या चीज है। मैंने बोला अरे यार ऐसी क्या बात, हम तो गुलाम अली के साथ इतना काम किया। बोले बस इसीलिए तो बुला रहा हूँ, तूने गुलाम अली जी से वाह वाह ले लिया है तो और क्या चाहिए, गुलाम अली से तो बड़ा नहीं है ना ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मैं स्टूडियो पहुंचा, तो पहुंच के उन्होंने तो 5 मिनट

0: तू मुझे अपना हारमोनियम ही सुनाते रहे। मैंने बोला कि इनको सुनना है मुझे कि नहीं, पहले पूछ तो लेना चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती क्यों सुना रहे मुझे। फिर मैंने टोक दिया बीच में, मैंने कहा कि मुझे ये सब जो आप बजा रहे हैं ये सब बजाना है क्या, तो ये सब मैं लिखूं? बोले नहीं नहीं, आपका पीस तो अलग है। तो मैंने कहा फिर तो वही बताइए ना जो मुझे बजाना है। तो जैसे ही बजा तो मैंने लिखने लगा, तो बोले लिखिए मत। मैंने कहा नहीं मैं लिखूंगा जरूर, ताकि आप बदल ना सके।
1: क्या बात है,
0: हाँ, लिख लूंगा तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था।
1: जी जी जी।
0: जब उन्होंने पूरा लिखवा दिया, दो टेक में मैंने बजा दिया।
1: क्या बात है।
0: तब से वो फोन करते थे मुझे, और गुलाम अली भाई तो फोन करते ही थे, उन्होंने भी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी। वो कहते सन ओनू भाई वो दूजा जरा आंदा है ओनू पता नहीं पंजाब घराने का, तुसी आओगे तो चंगा रहेगा।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही प्यार। तो जुदाई का ये किस्सा, और माचिस का किस्सा मैं खास करके आपको ये बताऊं कि पंचमदा जाने के बाद 3-4 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिल्म लाइन के प्रति मेरा मन उचाट जो बोलते हैं ना एक शब्द है, एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था कि मैं फिल्मों में क्यों बजाऊं, मैं अपने सोलो प्रोग्राम करूं वही अच्छा है। फिर फोन आ गया गुलजार साहब का, और गुलजार साहब की आदत है कि कोई बंगाली है तो अपने से छोटा भी है तो उसको दादा ही कहते हैं।
1: अच्छा।
0: आज भी गुलजार साहब मुझे दादा कहते हैं।
1: क्या बात है,
0: वो उनकी बैरुट
1: भारी
0: सी आवाज।
1: बिल्कुल,
0: कहाँ है हुजूर दादा, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं इंडस्ट्री में। भाई जी प्रणाम। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक नए लड़के को चांस दे रहा हूँ, उसका नाम है विशाल भारद्वाज, आप इस फिल्म में बजाइए। मैं जब गया वेस्टर्न आउटडोर, पहला पानी पानी रे, मैं बिना तबले के ये बजा रहा हूँ, इस दर्द को देखिए।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब लगता है कि गाना भी सुनवाना पड़ेगा। जी
1: ये गाना लोगों को सुनाए उसके पहले मैं एक बात
0: जी
1: विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके पहले मैंने बहुत माचिस से पहले बजाया मगर कभी स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया था, और सीडी में उन्होंने क्रेडिट पे मेरा नाम दिया। माचिस का पूरा बैकग्राउंड

ला ला ला ला, सब गाना मैंने बजाया। और बैकग्राउंड में एक यादगार किस्सा है जिसमें तब्बू जो है वो साइनाइट की गोली चंद्रचूड़ के मुंह में दे रही है, वहां का मेरा बजाया हुआ राग मारवा, उसमें वो किस्सा। मैंने कहा गुलजार साहब इस सीन को मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने कहा दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगी। उस सीन को याद करिए।

0: राग मारवा में ये बांसुरी की तान थी फिल्म माचिस, और अद्भुत आपने तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी। तो अब इसके बाद हम क्या गाना सुनवाएं या फिर
1: मैं चाहता हूं कि पानी पानी रे इस गाने को लोगों को सुनाइए, क्योंकि उसमें तीन फ्लूट मैंने डबिंग किए थे जो एक साथ अभी बजाना संभव नहीं, तो एक्चुअल जो मैंने बजाया उसको लोग सुन लेंगे तो, और दीदी की वो मखमली और वो शहद से टपकती हुई
0: आवाज,
1: वो आवाज जो लगता है कि माँ सरस्वती गा रही है।

0: रुनुदा, एक गाना है गीत फिल्म का, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और जब हमारी बात हो रही थी फोन पर तो आपने इसका जिक्र भी किया था। बड़ी सुंदर बांसुरी है उसमें, और बांसुरी वादक का रोल किया है राजेंद्र कुमार ने ना।
1: जी जी जी
0: तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को एक टुकड़ा सुनाएं?
1: उस पीस को हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत छोटे थे जब हम लोग,
0: जी जी
1: तो हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी ने उसको बजाया। उसका जो पीस है वो पंचम को सा करके बसता है,
0: जी जी
1: तो उसका टेक्निकली भी फ्लूट प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे वो बजा।

0: वाह, अद्भुत तान छेड़ी आपने।
1: मुझे भी डर लग रहा था कि वो पीस मुझे याद है कि नहीं। मैं इस पीस को कितने सालों बाद बजा रहा हूँ, मगर शुक्र है कि मैं बजा सका।
0: बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, ये जो घड़ी की सुई है ना, ये हम सबको बहुत बाध्य कर देती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है कार्यक्रम का वो है दूज का चांद। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों की आवाजों में, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रतन फिल्म का गाना, जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाज़ें हैं। डीएन मधोक का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत है नौशाद अली का।

रतन फिल्म का गाना आपने सुना जोराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाजों में। कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए आर पार फिल्म का ये गाना, जिसे गीता दत्त ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम बूट पॉलिश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत है शर्त फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, संगीत भी हेमंत कुमार का है, गीत एसएच बिहारी का।

आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। तो आज भी कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार से। महात्मा गांधी जी ने कहा कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं, जी हाँ, 8 जुलाई के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर। आपको बता देते हैं कि 1497 में आज ही के दिन महानाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की समुद्री यात्रा शुरू की थी। आज ही के दिन, जी हाँ, 8 जुलाई को 1914 में भारत और बांग्लादेश के बीच 42 साल बाद रेल यातायात फिर से शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बिल प्रकाशित किया गया आज ही के दिन, यानी कि 8 जुलाई को 1918 में। 1954 में आज ही के दिन सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नंगल पनबिजली परियोजना पर बना हुआ सबसे बड़ा नहर का, जी हाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। 8 जुलाई को 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी। 2012 में आज ही के दिन असम में आए हुए भयावह बाढ़ ने 8 जुलाई को, जी हां, आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों सहित 500 से अधिक वन्य प्राणियों की जान ले ली थी। और एक

सरसरी सी निगाह डालते हैं 8 जुलाई को जन्मे विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों पर, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनारसी दास का जन्म आज ही के दिन यानी कि 8 जुलाई को 1912 में हुआ। 8 जुलाई 1937 में हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार, आलोचक गिरिराज किशोर का जन्म हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार की राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजा व्यास का जन्म भी 8 जुलाई को 1946 में हुआ। 1958 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू सिंह का भी जन्म हुआ है। 1972 में आज ही के दिन

राष्ट्रीय महिला आयोग की दो बार की राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजा व्यास का जन्म भी 8 जुलाई को 1946 में हुआ। 1958 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू सिंह का भी जन्म हुआ है। 1972 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और महान बल्लेबाज सौरभ गांगुली का भी जन्म हुआ है। तो नीतू सिंह और सौरभ गांगुली को हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जुलाई को 1980 में भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद का भी जन्म हुआ। आज जुलाई को दिवंगत हो गए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो पता चलता है कि 2007 में आज ही के दिन भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का भी निधन 2020 में आज ही के दिन यानी कि 8 जुलाई को हो गया।

तो ये थी थोड़ी सी जानकारी 8 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवा देते हैं एक भक्ति रचना अग्निपथ फिल्म से। गायक हैं अजय गोगावले, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अजय अतुल।

जी हाँ, गणपति बप्पा मोरिया। सुबह सुबह लीजिए बप्पा का नाम यानी गणेश जी का नाम, पूरे होंगे आपके सारे काम, जीवन में खुशियाँ भर देंगे। जी हाँ, हमारे प्यारे गजानन सुबह शाम। बेहद ही खूबसूरत ये भक्ति रचना अभी आपने सुना अग्निपथ फिल्म से अजय गोगावले की आवाज़ में। और अब इसी के साथ आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

श्रोताओं, राष्ट्रव्यापी पर्यावरण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ एक जिंदगी की शुरुआत रोहतास और कैमूर ज़िले में कल 7 जुलाई को शुरू हुई। लोगों ने, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने और भी कई जगहों पर सभी वहां के स्थानीय निवासियों ने लगाए पौधे और कल से लगातार अब आने वाले कुछ दिनों तक पर्यावरण संरक्षण का लिया है संकल्प। रोहतास जिला के सूर्यपुरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर कल मंगलवार को गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का आयोजन हुआ तथा महिलाओं का पारंपरिक रीति रिवाज से सम्मान किया गया। बिहार सरकार द्वारा महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में लोगों की समस्याओं की जानकारी एवं समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड अंतर्गत भैसहा पंचायत भवन बस्तीपुर में मंगलवार कल 7 जुलाई को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। कैमूर जिले में पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर में प्राप्त

1136 आवेदनों में 632 मामलों का कल निष्पादन किया गया। आपको बता देते हैं कि कल मंगलवार को कैमूर जिले के 11 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश तथा उप विकास आयुक्त कैमूर के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में जल जीवन हरियाली दिवस कल उत्साहपूर्वक मनाया गया और कार्यक्रम का मुख्य विषय शिक्षण के साथ जल संरक्षण, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में छत वर्षा जल संचयन एवं जन जागरूकता अभियान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन चेतना सत्र से हुई, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने जल संरक्षण की शपथ ली तथा जल के महत्व एवं उसके संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा किया। विद्यालयों में विशेष जागरूकता सत्र, भाषण, निबंध, चित्रकला एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने वर्षा जल संचयन के मॉडल एवं पोस्टरों के माध्यम से जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसरों में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जल स्रोतों के संरक्षण संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कल दिनांक 7 जुलाई को रोहतास जिला के 65 पंचायतों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं लाभुकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन दिए, जिनका मौके पर ही निष्पादन करते हुए कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। नोखा प्रखंड के धर्मपुरा एवं कदवा पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। वहीं रोहतास प्रखंड के रसूलपुर एवं रोहतासगढ़ पंचायत भवन में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ। जिले की अन्य पंचायतों में भी विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में शिविर का संचालन किया गया। इसके साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में भी 32 वार्डों में वार्डवार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पात्र लाभिकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को तत्काल राहत प्रदान की गई। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। शिविर में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसी उद्देश्य से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों का समय और संसाधन दोनों बच रहे हैं तथा सरकारी सेवाओं की पहुंच भी अधिक प्रभावी हो रही है।

तो ये थी थोड़ी सी जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। और अब कार्यक्रम में समय है कि हम आपको सुनवा दें एक गीत। जी हाँ, सरगम फिल्म से हमने इस गीत को चुना है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर जी की, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। अब आइए एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर।

सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि स्टेट हाईवे पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों पर ही टोल टैक्स। जी हां, कमर्शियल वाहनों पर ही अब टोल टैक्स लगेगा, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल कहा। 24 घंटे पहले सरकार ने टोल रेट जारी कर दिए, सिर्फ दोपहिया, तीन पहिया और ट्रैक्टर को छूट दी गई। और मुख्यमंत्री ने कल मंगलवार को कहा है कि कमर्शियल वाहनों यानी व्यावसायिक वाहनों पर टोल टैक्स ही लगेगा, निजी वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर भी काम कर रही है। कानून व्यवस्था और घुसपैठ को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में 735 किलोमीटर के दायरे में 194 बॉर्डर आउट पोस्ट मजबूत किए गए हैं।

हिंदुस्तान अखबार अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल बेचेगा भारत। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल बेचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान कल मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी है। रेलवे में 4098 पदों पर भर्ती को मंजूरी। रेल मंत्रालय ने देश के अलग अलग रेलवे जोन में 4098 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। ट्रू कॉलर समेत 3 ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रू कॉलर समेत 3 ऐप्स पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक इसके लिए ट्राई ने सरकार से अनुमति मांगी है। इन पर आरोप है कि सरकार की तरफ से व्यावसायिक कॉल के लिए जारी विशेष नंबर की श्रृंखला 1400 और 1600 को भी ये कंपनियां स्पैम नंबर बताकर ब्लॉक कर रही हैं। ट्राई का कहना है कि व्यापार संचार के लिए इन नंबरों को खास तौर पर शुरू किया गया। अहमदाबाद धमाकों के 38 दोषियों की फांसी बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामलों में विशेष अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा किसी प्रकार का टोल टैक्स, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। अब बिहार में पीएचडी के लिए नए नियम लागू किए जा चुके हैं। अब 7.5 सीजीपीए पर सीधे पीएचडी में प्रवेश का मौका। देश के 200 आईटीआई क्लस्टर में पीएम सेतु योजना को मंजूरी मिली। और चलते चलते खेलों की बात करें तो मेरिनो ने पुर्तगाल का कल दिल तोड़ दिया। जी हाँ, विश्व फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में कल मेरिनो ने पुर्तगाल को हरा दिया। साथ ही अमेरिका पर बेल्जियम की भी धमाकेदार जीत हुई। और विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉलर जो कि पुर्तगाल के हैं रोनाल्डो, इनकी विश्व कप ट्रॉफी चूमने की हसरत भी इसी के साथ अधूरी रह गई। और अब चलते चलते आइए डालते हैं मौसम पर नज़र। तो हम बता दें आपको कि मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने की भी संभावना है। और अब इसी के साथ चलते चलते आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

मंजर है ये नया। जी हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में भी मंजर कुछ नया हो जाता है। तो फिलहाल नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से अब मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

नमस्ते रोहतास, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा

0: 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं।

0: संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल।

0: इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप समाचार प्रभात सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक देशभक्ति रचना फिल्म फाइटर से। फाइटर फिल्म के इस गीत को अपनी आवाज़ दी विशाल जडलानी और शेखर राव जियानी ने। गीत के बोल कुमार के हैं और संगीत है विशाल शेखर का।

अभी आपने ये देशभक्ति रचना सुनी फाइटर इस फिल्म से। गायक स्वर था विशाल जडलानी और शेखर राव जियानी का, कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। इसी के साथ ही हमारा आज का देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के पूरे 8:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम में आपकी बेताबियां हम ख़त्म करते हैं। जी हाँ, ये पहला पत्र हमारे हाथों में है जिसे लिखकर भेजा कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत प्रवीण, सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा ने। वाराणसी से हैं किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव और संध्या श्रीवास्तव। और इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है रोटी फिल्म के गीत गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत, और कुछ और श्रोताओं के भी नाम इसी गीत में हम शामिल कर रहे हैं जिन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें। तो हम अपनी पसंद का तो नहीं, हमारे श्रोताओं की ही पसंद का ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं इसमें आपके नाम को शामिल करते हैं। आप सब हैं नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू सैक और चीना सैक। शेख टोली समस्तीपुर से हमें ख़त लिखा मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज ने। कोकिलवारा और आई ज़िला मुजफ्फरपुर से हैं फैसल सैक और नुजहत जहां नाज। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं रोटी फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में। गीत के बोल आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गोरी चलो ना हंस की चाल, बेटी बेटा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है खनकती हुई आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था और फरमाइश की थी हमारे इन श्रोताओं ने। जी हाँ, आप सब हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये। और इन्होंने 27 जून को ही ये पत्र हमें लिखकर भेजा था और इस पत्र में लिखा है कि हमारी ये फरमाइश ज़रूर शामिल करें। तो जी हाँ, हमने तो आज शामिल कर लिया। और आप सब हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छेलाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। आपने अपने ख़त में लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और पसंद आपके कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गीतों का। तो चलिए अब शामिल करते हैं आप सबकी पसंद। जी हाँ, आप सब हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश है मेरा गांव मेरा देश फिल्म के गीत मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो नहीं भाई, किसी को मारना भी नहीं है और ना ही किसी को छोड़ना है, लेकिन फ़िलहाल पूरी करनी है आप सभी की ये फरमाइश। लीजिए सुनिए मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ जी हाँ मखमली सी बेहद ही बेहतरीन सुंदर सी लता मंगेशकर जी की।

और जो ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, तो इसकी फरमाइश इत्तेफाक की बात है कि कुछ और श्रोताओं ने भी की है। मिसल मोहल्ला नरहन बाज़ार से फटफटियां झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू और बी के सुरगनैया ने। और इसी के साथ हम कार्यक्रम में लेते हैं ये अगला गीत जो कि अंतिम गीत भी है। जी हाँ, सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत है, आवाज़ उदित नारायण की। समीर ने इसे लिखा है और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहा भेला डी थाना चांद ग्राम सिरीहरा से शंभू प्रसाद चौरसिया, राजू कुमार चौरसिया, गोलू कुमार, प्रभावती देवी, विद्यावती देवी, भरत प्रसाद, बालवीर और मनमोहन चौरसिया ने। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ और गजेंद्र कुमार निराला। थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से इस पत्र को लिखा मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन्निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज ने। तो चलिए आप सभी को हम सुनवा देते हैं।

हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत, लेकिन चलते चलते ये एक और पत्र भी शामिल करते हैं इसी गीत में। बक्सर बिहार से इस पत्र को लिखकर भेजा शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने। डुमराओं बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। तो चलिए उदित नारायण की आवाज़ में सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, पसंद आपके कार्यक्रम में अब समय है कि आपको हम पता बता दें। हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो अब इसी गीत के साथ हमारा आज का यह पसंद आपकी का सफ़र अब यहीं ख़त्म हुआ। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने

0: वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार, तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है विकसित भारत के लिए। विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने

0: सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत यह तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। लोक भवन ने इस संबंध में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: नए नियमों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 7.5 CGPA या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना ही सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। वहीं 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। ये नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद आएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्य तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र शामिल हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के तहत दायर किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान आवेदक या विपक्षी से भौतिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनके स्थान पर ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार होंगे। साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज की आवश्यकता होने पर संबंधित पक्षकारों को उसे RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में लागू विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसी सिलसिले में मंत्रालय का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा, उप सचिव डॉक्टर मोनिका और वरीय लेखा पदाधिकारी विपिन बांगर ने पटना के मुख्य सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। टीम

0: आज पश्चिम चंपारण जिले का दौरा कर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के पांचों घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिले ने लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पांव मुक्त जिला बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ये जिले अब फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निगरानी चरण में प्रवेश कर गए हैं। इन जिलों ने वर्ष 2026 के ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के सभी पात्रता मानदंड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कार्यक्रम के तहत अब यहां दवा वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे ये बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान कई स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आज और कल रात के समय यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जाने वाले स्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की विशेषज्ञ टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। यह निरीक्षण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाएगा। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड के मानसी सहरसा स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए जल्द ही निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर महीने से दोहरीकरण का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और इस पर 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। DRM श्री मिश्रा ने बताया कि दोहरीकरण परियोजना के तहत 8 बड़े पुलों का निर्माण होगा। लखीसराय के समाहरणालय परिसर में 21 जुलाई

0: इसे 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर में प्रतिदिन 55 आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। इच्छुक नागरिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लखीसराय को स्थल के रूप में चुन सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सुमन सौरभ को 2000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। लिपिक पर लाइसेंस बहाल करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। भोजपुर जिले की स्थानीय अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी देवभूषण को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से 100 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब वाहन के चेचिस में छिपाकर ले जाई जा रही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। मैच में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 13 रन बनाए। श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को नहीं लगेगा टोल। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने चौंकाया, युवा मोर्चा के अभिषेक कुमार बने प्रत्याशी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प, चल रहा है अंतर मंत्रालय विमर्श। प्रभात खबर लिखता है, अयोध्या की तरह संवरेगा बाबा धाम, बनेगा कॉरिडोर, NIT पटना बना रहा है मास्टर प्लान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार मानवाधिकार आयोग का बड़ा फैसला, भरत तिवारी के माता पिता को मुआवजा दे बिहार सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा PhD में प्रवेश, 7.5 CGPA पर सीधे होगा PhD में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। अब हम डालेंगे कार्यक्रम ब्यूरो के अंतर्गत आज हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर एक नज़र।

अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए। सुबह 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 10:05 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम पुनर्नवा। सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। 10:45 का समय होगा रसधार का, जिसमें आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। रंग तरंग आकाशवाणी विविध भारती का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:00 से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा हिंदी समाचार दोपहर 12:00। 12:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 2:00 से प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से हम मध्याह्न समाचार आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:15 से दोपहर 2:30 तक। आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम गीत सखी सहेली और आज के मेहमान। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से शाम 5:00 तक। शाम 5:00 का समय होगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार का। हमारे सासाराम केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:05 पर उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन। 6:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण। शाम 6:40 से भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस हम लेकर आएंगे हमारे आकाशवाणी सासाराम से शाम 7:00। 7:15 पर गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए। हमारे सासाराम केंद्र से आप सुनेंगे 7:50 से फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। 8:45 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ, जिसमें आज आप सुनेंगे शहनाई वादन उस्ताद अली अहमद हुसैन से। राग होगा कलावती। 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। रसरंग हिंदी

पम सॉन्ग पर आधारित ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे आकाशवाणी सासाराम से रात 10 बजे और 10:30 पर हम लेकर आएंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 10:55 पर अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर आएंगे। रात 11 बजे का समय होगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार का और 11:05 पर समय होगा अंग्रेजी समाचार का। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कुछ हिंदी फिल्म संगीत, जी हाँ, कार्यक्रम गीत मालिका में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाते हैं आपको बरसात फिल्म का ये गीत।

भींग जाती हैं पलके भी सुहावने मौसम में। जी हाँ, भींग जाती हैं पलके भी सुहावने मौसम में, क्योंकि बारिश की हर बूंद में बस तुम ही तुम नज़र आते हो। जी हाँ, बरसात बरस रही है और दिल फिर से बार बार बस उन्हीं को याद करता है जिन्हें हम दिल से बेहद चाहते हैं, दिल के करीब होते हैं। बेहद ही खूबसूरत गीत बरसात का ये हमने आपको सुनवाया कुमार सानू और अलका याग्निक की सुरीली आवाज़ में। शब्द रचना समीर का और संगीत रचना था नदीम श्रवण का। और अब कार्यक्रम में अगला गीत चांदनी फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। विनोद राठौर और आशा भोसले की युगल आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, शिव हरि का संगीत है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ रहता है जब, तो हर सुबह रोशन हो जाती है। और फिर जब साथ साथ जन्मों का हो, तो ये ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। फना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल आवाज़ में था। प्रसून जोशी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका में हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुम बिन टू फिल्म से लिया गया एक गीत, जिसे लिखा मनोज मुंतशिर ने है, धुन बनाई अंकित तिवारी और निखिल बिनय ने, आवाज़ें अरिजीत सिंह के साथ तुलसी कुमार की।

देख लेना जी। हाँ, अभी आपने ये गीत सुना तुम बिन टू फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की युगल आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी वक्त जो है वो ठहरता नहीं है, निकलते जाता है और कहता है।

0: कि बस चल पड़िए, आगे बढ़ते रहिए, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र। तो आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र और सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार।
1: भारतीय देश की सुरीली धड़कन आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

0: आएगा।
1: 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।

0: कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बम्बई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चीन, पोकली, दादर, लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूं। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बनाकर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा।
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
2: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
3: कहाँ जा रहे थे?
2: बगदाद
3: है।
2: अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
3: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा, क्या जान से मार देता है।
2: हाँ चल, चलता है
3: ना बाबा।
2: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
3: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
2: अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटा से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दीमी है ना पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींचिए के जाते किधर हुआ और कस के धो दिए लबाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।

0: दोष है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली, ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पेड़ पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तुम्हें माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मेरे फिन फिनाई तो जरा सुधाई कर दी, जटा बहुत मारा बहुत मारा।
1: फिर क्या हुआ?
0: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
1: क्या कहा?
0: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
2: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।

0: जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं।
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए जी,
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए जी,
1: दिल से दिल

0: देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे?
1: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के,
1: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग

0: मत डाल के।
1: शोध आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए
1: स्पेशली।
2: इसे हम लोग करियर नहीं मानते,
1: मतलब
2: एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो पढ़ा बोलते हैं आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में
3: संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़क कर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम पुनर्नवा।

0: कार्यक्रम पुनर्नवा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का आज के इस पुनर्नवा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो साथी विनीता सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके प्रिय कार्यक्रम पुनर्नवा में हमेशा किसी न किसी वरिष्ठ मेहमान से आपको मिलवाते हैं। तो साथियों, आज के इस पुनर्नवा कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज की वरिष्ठ सम्मानीय मेहमान अनीता श्रीवास्तव जी से, जो कि एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका रह चुकी हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आज की हमारी वरिष्ठ सम्मानीय मेहमान अनीता श्रीवास्तव जी से मिलकर और हमारी बातचीत सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगी, और उनके साथ साझा किए गए उनका ज्ञान अनुभव से आप सबको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, आइए अब अनीता श्रीवास्तव जी से शुरू करते हैं बातचीत। मैम, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से आज के इस पुनर्नवा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारी श्रोताओं को।
1: मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है। मैं एक सरकारी शिक्षिका रह चुकी हूँ। मेरे शिक्षक जीवन की यात्रा डीएवी सासाराम से शुरू हुई और मैंने 10 वर्षों तक वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मेरा चयन सरकारी शिक्षिका के पद पर हुई। अवकाश प्राप्ति तक मैंने वहाँ सेवा की।
0: जी मैम, आप एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका रह चुकी हैं, तो अपने शैक्षणिक जर्नी के बारे में बताइए।
1: जी, मेरी शैक्षणिक जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने प्राइवेट स्कूल में भी तन मन से मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाया, पूरे समर्पण के साथ पढ़ाया, और निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय, सभी जगह मैं बहुत ही मेहनत लगन के साथ बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे और बच्चों के साथ मैंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया।
0: जी, यानी कि आप पूरे समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ाती थी।
1: जी
0: मैम, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आपने कहाँ तक शिक्षा हासिल की?
1: मेरी प्रारंभिक शिक्षा सासाराम से ही शुरू हुई। मैट्रिक के बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग किया, फिर बीए ऑनर्स से महिला कॉलेज सासाराम से की, फिर एमए की पढ़ाई एसपी जैन कॉलेज से की और एमए एसपी जैन से हिंदी से की, और फिर डीएवी में पढ़ाते हुए इग्नू से मैंने बीएड भी किया कॉरेस्पोंडेंस कोर्स से।
0: जी मैम, क्या आप शुरू से ही एक शिक्षक बनना चाहती थी या कुछ और करने की ख्वाहिश थी, आपका कुछ और करने का इरादा था, बताइए जरा।
1: मैं शुरू से शिक्षक तो नहीं, लेकिन प्रोफेसर बनना चाहती थी। जब मैं पढ़ती थी, ऑनर्स का क्लास करती थी, तो एक मैम के घर ट्यूशन करने जाती थी, तो उस समय मैम के यहाँ बहुत बच्चे पढ़ने जाते थे और मैम बहुत प्यार करती थी बच्चों के, और मैं भी मैम से बहुत प्यार करती थी, बच्चे भी प्यार करते थे। तो एक बार उनका बर्थडे था तो सारे बच्चे उनके लिए गिफ्ट लेकर गए और बुके लेकर गए, मैं भी गई, तो मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा पेशा है और एक बच्चों के साथ अपने जीवन को बहुत सुखमय और आनंदमय व्यतीत कर सकता है आप। इसलिए मुझे उसी समय प्रोफेसर बनने की इच्छा, मतलब मन में शौक पैदा हुआ और इसी तरह पढ़ाई में मेरी

0: हो गई कि मैं पढ़ूंगी और एक अच्छी शिक्षिका बनूंगी।
1: जी आपके मन में चाह जगी अपने प्रोफेसर को देख के कि मैं भी इनके जैसा प्रोफेसर बनूं।
0: जी
1: मैम, अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो इस क्षेत्र में वो क्यों आए? आपके हिसाब से आप बताइए कि इस पेशे को क्यों चुने, इस पर आपकी क्या राय है? किस इरादे के साथ वो आए शिक्षक बने,
0: जी
1: अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है?
0: शिक्षक का पेशा एक अत्यंत सम्मानित और समाज निर्माण का कार्य है। इस पेशे में स्थिरता भी है और नियमितता भी है। समय सारणी के साथ से हम पढ़ाने जाते हैं, समय पर नियमित जाते हैं, घर आते हैं। एक अच्छा जीवन और परिवार के साथ हम नौकरी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो समाज में बच्चों को प्यार दे, अच्छा समाज निर्माण करें, तभी शिक्षक बने। अगर अंदर से की सेवा करने की भावना उसमें हो तो वह वही शिक्षक के पेशा चुने और शिक्षक लाइन में जाए। क्योंकि देखिए, शिक्षक ही भावी पीढ़ी का निर्माण करता होता है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम समर्पण तन मन से अगर हम नहीं समर्पित होकर जाएंगे तो फिर अच्छा का अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों के लिए से जाना चाहिए, लाइन चुनना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण करता होता है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि एक शिक्षक ही भावी पीढ़ी का निर्माण करता है। तो अगर कोई शिक्षक बनने का इरादा रखता है तो उसे समर्पण भाव से ही शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए।
0: शिक्षक को देखिए, समाज में बहुत आदर और सम्मान भी मिलता है। कि किसी भी क्षेत्र में इतना आदर और सम्मान नहीं मिलता है जितना शिक्षा के क्षेत्र। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो बच्चे भी आपको प्यार करते हैं और बच्चे के अभिभावक भी आपको बहुत ही आदर और सम्मान देते हैं।
1: जी
0: इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लाइन लगता है।
1: जी आपने इतने वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया, घर परिवार बच्चे विद्यालय ये सब आप कैसे संभालती थी? कहने का मतलब है कि कैसे तालमेल बिठाती थी, सामंजस्य कैसे बिठाती थी घर गृहस्थी के कामों में और बाहर, यानी जब अध्यापन करने जाती थी तो स्कूल के कामों को, इन सारे दायित्वों को आप कैसे निभाती थी?
0: देखिए, यह तो बहुत वर्किंग लेडी के लिए तो बहुत बड़ा दायित्व तो होता है।
1: जी
0: 28 सालों तक मैं नियमित शिक्षण कार्य करती रही हूँ और बच्चे और परिवार के साथ संभाली हूँ। मेरे पति ने मेरा साथ दिया हर कदम पर। मेरे पति का बहुत ही सहयोग रहा, फिर भी हर कदम पर उनका साथ मिला, इसलिए मैं अच्छी तरह से अपने गृहस्थी को संभालते हुए नौकरी कर पाई।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि जब तक घर परिवार पति पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति जब तक पूरी तरीके से सहयोग नहीं करते हैं, तब तक चाहे पति हो या पत्नी हो, आप जीवन में ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं उसमें पूरी तरीके से वो समर्पित होके नहीं कर पाते हैं। शिक्षण के साथ साथ आप और क्या करना पसंद करती हैं? आपके शौक क्या हैं, हॉबी क्या हैं?
0: शिक्षा के साथ साथ मुझे खेल में भी रुचि है। मैं बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करती हूँ, गाने सुनना भी पसंद करती हूँ, फुर्सत में रामायण और भगवद गीता पढ़ती हूँ, पूजा पाठ भी करना पसंद है, मुझे शौक है। और फुर्सत के पल में मैं पढ़ाई में रुचि रखती हूँ तो अध्ययन अध्यापन का भी कार्य करती हूँ कुछ।
1: तो मैम, फुर्सत के पलों में आप किस तरह के गाने पसंद करती हैं? किस गायक के गाने आपको पसंद हैं?
0: पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है, लता
1: उसका
0: मंगेशकर जी के गाने मुझे बहुत पसंद है।
1: जी, तो आइए श्रोताओं, मैम के साथ सुनते हैं लता जी के ये गाने।

0: रेडियो वगैरह सुनना भी आपको पसंद है?
1: जी, रेडियो भी मैं सुनती हूँ।
0: कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: जी, शिक्षक समाज के वो कर्णधार हैं जो भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। आपके हिसाब से शिक्षक में वो कौन से गुण होने चाहिए या वो कौन से कार्य करने चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो?
1: शिक्षक देखिए आने वाली पीढ़ियों को जीवन का आकार देने की शक्ति रखते हैं।
0: जी
1: एक अच्छे टीचर बनने के लिए लगातार सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमेशा पठन पाठन में रुचि रखना चाहिए। बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और जो भी विषय हम पढ़ाते हैं उस पर हमारा कमांड होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे इसके लिए उन्हें बीच बीच में कुछ इंटरटेनमेंट भी कराते रहना चाहिए। उन्हें कहानी के रूप में अगर समझा कर पढ़ाया जाए तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं, रुचि लेकर पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए।
0: जी
1: बच्चों को सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर करें, सम्मान दें और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं लेकिन एक शिक्षक ही एक कुम्हार की तरह शिक्षक है। जैसे बच्चों को गढ़ना चाहें गढ़ सकते हैं इसे। इसलिए हमें मतलब बच्चों को बनाने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: अवकाश प्राप्ति के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं?
1: आकाश प्राप्ति के बाद मुझे अच्छा लग महसूस हो रहा है क्योंकि

0: की भाग दौड़ में मैं अब ऊब चुकी थी। अब लगता है कि अब कुछ अपने लिए समय निकाला जाए, और जो भी शौक मैं इस जीवन भाग दौड़ में नहीं पूरा हो सका, उस शौक को मैं पूरा करना चाहती हूँ। जैसे स्कूल के समय पढ़ाने के में मैं जिम नहीं जा पाती थी, और
1: जी जी
0: तो जिम जाना पसंद करती, फिर बागवानी में नहीं समय दे पाती थी। फिर तो ये सब अवकाश प्राप्ति के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो नहीं कर पाई उस काम को मैं करना चाहती हूँ, और कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। जैसे आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाना है, तो बहुत कुछ मोबाइल से मैं सीखती भी हूँ,
1: जी
0: और हर काम तो ऑनलाइन हो रहा है। सीखने में रुचि रखती हूँ, नई नई चीजें सीखना पसंद है, मुझे खाना बनाना भी पसंद है।
1: यानी कि आप अपने पूरे समय का सदुपयोग, आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से खाना बनाना, बागवानी करना, खाली
0: जी
1: समय में आप ये सब करती हैं, क्योंकि आप को शिक्षण के दौरान ये सब करने का उतना समय नहीं मिलता होगा, तो आप अवकाश प्राप्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक तरीके से इंजॉय कर रही हैं इन सब कामों को करके।
0: जी इसी में मेरा समय व्यतीत हो जाता है,
1: जी, मन लगा रहता है आपका।
0: समय बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। बीच में मैं रामायण भी पढ़ती हूँ, और अध्ययन अध्यापन में मेरी रुचि है, तो अखंड ज्योति भी पढ़ती हूँ।
1: जी मैम, हर किसी की अपनी जीवन यात्रा होती है, और उसमें कुछ खट्टे मीठे, कुछ खट्टे कुछ मीठे पल होते हैं, कुछ सुनहरी यादें होती हैं। आपके जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें हो तो हमें बताइए।
0: खट्टी मीठी तो बहुत सी यादें हैं।
1: जी
0: देखिए, मैं जब डीएवी पढ़ाती थी, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बर्थडे दो दो दिन मनाते थे। मैं हमेशा नहीं बताऊंगी, फिर भी उन लोग को याद हो जाता था, और वो इतने प्यार से मनाते थे कि वो चीजें मुझे हमेशा याद रहती हैं। फिर गवर्नमेंट टीचर बनी, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स जो मुझसे बहुत छोटी हैं, टीचर हैं, और वो इतना मुझे प्यार करती हैं कि इस बार रिटायरमेंट के पहले मेरा बर्थडे इतना शौक से मनाई कि वो सब याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: जो आपके साथ शिक्षिकाएं थीं, आपके जूनियर टीचर्स थीं, बच्चों का, सबका आपको बहुत प्यार मिला।
0: जी, प्यार के साथ मैं जीना पसंद करती हूँ।
1: मैम, इस समय सेहतमंद रहने के लिए आप क्या-क्या करती हैं? आपकी जीवन शैली क्या है, बताइए।
0: जी देखिए, स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी है कि मुझे बार बार कहती है, मम्मी पूजा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, पहले स्वास्थ्य है फिर पूजा है। तो स्वास्थ्य के लिए मैं प्रतिदिन जिम जाती हूँ और योगा करती हूँ, जो डाइट में भी जो प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा करना चाहिए, वो सब भी मैं अपने दिनचर्या में स्वस्थ रहने के लिए खाती हूँ।
1: यानी कि आप जो है हेल्दी डाइट लेती हैं,
0: जी
1: और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए जिम जाती हैं, योगा करती हैं, और खाली समय में आप अध्यापन करती हैं, मतलब पढ़ती लिखती रहती हैं,
0: जी
1: बागवानी करती हैं, तो इस वजह से आपका मन लगा रहता है, आप खुश
0: पुत्रवत
1: रहती हैं। मैम, एक छात्र और शिक्षक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए?
0: संबंध होना चाहिए, जैसे एक पिता पुत्र के का संबंध होता है, वैसे हमें छात्र और शिक्षक के बीच संबंध होना चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए हमें छात्रों से, अपने बच्चों की तरह अगर आप मानती हैं तो छात्र भी आपको अपना मानेंगे, और ये मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए छात्रों के साथ।
1: जी, यानी कि आप अपने बच्चे के तरीके से अपने विद्यार्थी को मानना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगी, या उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी आज के विद्यार्थियों को?
0: विद्यार्थियों को मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले वे समय के महत्व को समझें और समय बर्बाद न करें, नियमित अध्ययन करें, पढ़ाई में रुचि लगाकर पढ़ें, जो भी काम करें, जो किसी भी क्षेत्र में, वो स्पोर्ट्स में हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी जाए, हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करें और अच्छा प्रदर्शन करें। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा समय मोबाइल पर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो
1: जी
0: यह ठीक नहीं है। फिर आगे जाकर उन उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा, और पढ़ाई भी बाधा हो रही है, पढ़ाई में भी। तो माता पिता को भी चाहिए

0: बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान दें और कि वे क्या कर रहे हैं और उनको समझाएं, और नियमित अध्ययन करने से बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं सब अपना। पहले तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छे
1: जी
0: इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम एक समाज में आगे किसी भी कार्य क्षेत्र में हम अपना परचम लहरा सकते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, बिल्कुल सही कहा कि जब तक एक बच्चा या कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तब तक वो समाज में कहीं भी किसी भी लाइन में जाता है तो वो अच्छा काम भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बनना, और इसकी जिम्मेदारी शिक्षक को भी है और इसकी जिम्मेदारी माता-पिता के ऊपर भी है, क्योंकि बच्चे के संस्कार का निर्माण घर से शुरू होता है जो विद्यालय में शिक्षक तक जाता है। तो
0: जी
1: आपने बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही। मैम आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया, आपने हमारे साथ अपने कार्य अनुभव ज्ञान साझा किया, इसके लिए हमारी तरफ से और सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज के इस पुनर्नवा कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे अवकाश प्राप्त शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव जी से। तो श्रोताओं, पुनर्नवा कार्यक्रम का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। किसी सम्मानीय मेहमान के साथ अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। साथियों नमस्कार, स्वर एवं संकलन विनीता सिंह, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुनर्नवा, अभी आप सुन रहे थे इस विज्ञापन से पहले साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम लोक माधुरी लेकर हम थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे। तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में एक पारंपरिक एल्बम लोकगीत, जिसकी धुन शारदा सिन्हा ने बनाई है और एल्बम है परदेशिया बलमुआ।

शारदा सिन्हा के स्वर में अभी आपने सुना ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत परदेसिया बलमुआ इस एल्बम से। और अब सुनिए भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में एक और पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत। जी हाँ, इसे हमने चुना है, करी हम कौन बहाना।

भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। इसी के साथ ही हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रसथार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अक्षरा सिंह की आवाज़ में यूपी बिहार लूटने

अक्षरा सिंह के स्वर में अभी आपने सुना अजीत मंडल का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग यूपी बिहार लूटने इस एल्बम से। और अब लीजिए सुनिए आलोक रंजन और ज्योति तिवारी को एल्बम भा गईल अखिया में। गीतकार और संगीतकार हैं अशोक कुमार दीप।

आलोक रंजन और ज्योति तिवारी को अभी आपने सुना भाग गई अखियां इस एल्बम में। और अब रसदार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए छोटू छलिया के स्वर में इन्हीं का लिखा हुआ एक एल्बम सॉन्ग जिसकी धुन बनाई है ज्ञानी ने, और एल्बम है शेरा वाली आजा।

शेरा वाली आजा छोटू छलिया की आवाज़ में अभी आपने इस एल्बम का, ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सुना। तो इसी के साथ अब हमारा आज का रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, जुड़े रहिए हमसे।

हम सुन रहे थे ये भजन हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में, सुदर्शन फकीर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

0: प्यार का पहला एल्बम से ये लिया गया गीत, जिसे लिखा हस्ती ने, जगजीत सिंह ने गाया और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये

0: प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है,
1: जी
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता
2: है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा मरासिम एल्बम से। जगजीत सिंह की आवाज है, उन्होंने उसे संगीतबद्ध किया है और गुलजार ने बोल लिखे हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा जिसे संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने, गाया है जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम ने, फिल्म पिंजर से जिसे लिया गया है। आइए सुनते हैं साथियों की आवाज के साथ में ये नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जो कि है द खजाना कॉन्सर्ट से। तलत अजीज की आवाज है और तलत अजीज के संगीत से सजा हुआ था। और हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एक और नगमा जिसे पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास की ही संगीत से सजा हुआ है। आइए सुनते हैं ये नगमा खुशबू बनकर द खजाना कॉन्सर्ट से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: विपणन, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।
2: मन के

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा, अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें, गुलशन बावरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से, आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्री

स्त्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियां हमारे भीतर ही मौजूद है, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कल।

डाकिया डाक लाया। और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छाँव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छाँव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है। बहुत सारी बातें इसमें हुई थी, लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था। गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था, तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिलेक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में, और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं। इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं। इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद

खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है, क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे हैं, और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं, कभी सफेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुरों की महफिल सजाते गायक गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बर्ची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए, और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आजमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है। ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है, और वह बदल गया। जी बिल्कुल बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं। ये भी तो एक अच्छी बात है ना हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार।

होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप जरूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था, हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं, प्राण साहिब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टार्जन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टार्जन होना चाहते थे, बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है। हाँ, ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी। हम सब चीजें नहीं पढ़ सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत जरूर पहुंचा सकते हैं, और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है, और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, जरूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहां पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ, जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि

एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में एक, दो, तीन, चार, पांच या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए, हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हो। वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा। चलिए बताइएगा जरूर।

ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद हैं, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं? बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मज़ेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूसरा राम, तीसरा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था, वो बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानू नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई, ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंद

सबको देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी माँ पिता बहन सारे रोल उन्होंने ही किए थे जी। जुड़वा बेटों की तिहरी भूमिका कई सारे निभाए हैं, अमिताभ बच्चन ने इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में, राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमीन पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली LLB में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना फलसी ककर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीजें आपको बतानी है। वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं, यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हैं गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, जरूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन है।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी। हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सबने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है, और उन माँओं में से आप सबने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म है खामोशी से, जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के सभी कामों को तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे यह बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: लेकर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। जिन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करें। परामर्श में कहा गया है कि पंजीकृत यात्रियों को उनकी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे मरहले के असातजा बहाली इम्तहान के लिए इश्तहारात 25 जुलाई के बाद शाई कर दिए जाएंगे। जनाब तिवारी ने महकमा की आला सतही जायजा मीटिंग के दौरान इससे मुतल्लिक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दरखास्त अरसाल करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने महकमा के सभी कामों को तय मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और मौसूल दरखास्तों का ज्यादा से ज्यादा 30 काम के दिनों के अंदर निपटारे को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वजारत तालीम ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम रियासतों और ज़िले के लिए PGI पर साल 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत 13 रियासतों में स्कूली तालीम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये रियासती आकांक्षी वन जुमरे में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस फहरिस्त में पूरे मुल्क में पहला मकाम हासिल किया है। गौरतलब है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े तालीमी निज़ाम में से एक है। इसमें तकरीबन 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से जायद असातजा और 25 करोड़ तलबा हैं। रियासती काबीना की मीटिंग आज तलब की गई है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में शाम 5 बजे ये मीटिंग सेक्रेटेरिएट वाकई काबीना हॉल में होगी। काबीना की मीटिंग में कई अहम तजावीज़ पर मुहर लगने का इम्कान है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर मुआयने के पेश नज़र आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। जिला इंतजामिया ने सेतु के बेली ब्रिज की जगह पर किए जा रहे मुस्तकिल बहाली के काम के पेश नज़र ये फैसला लिया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक IIT पटना के माहिरीन की टीम पुल की तकनीकी जांच और मुआयना करेगी। बीजेपी के

0: कौमी सदर नितिन नवीन कल रियासत के दो रोजा दौरे पर पटना पहुंचेंगे। जनाब नवीन पार्टी अहदेदारान के साथ मीटिंग में बाकी पूर असेंबली सीट के लिए हो रहे जिमनी इंतखाब की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही एनडीए की हलीफ जमातों के सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग भी करेंगे। जनाब नवीन 10 जुलाई को पटना में मुनक्किद एनडीए की पांचों हलीफ पार्टियों की मीटिंग में शरीक होंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नई मुशाविरत जारी की है। इसके तहत जायरीन से रजिस्ट्रेशन का अमल और हिफाजत के रहनुमा उसूलों की सख्ती से तामील करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुकर्रा यौमिया जायरीन सरहद नाफिज रहेगा। अकीदतमंदों को सलाह दी गई है कि वो पेशगी रजिस्ट्रेशन करा लें और सफर सिर्फ अपने परमिट में तय तारीख पर ही करें। जिन जायरीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनसे दरखास्त की गई है कि वो अपने सफर की तारीख का इंतजार करें। मुशाविरत में कहा गया है कि रजिस्टर्ड जायरीन को उनकी तयशुदा तारीख से कबल यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत में मानसून की फ़ौलियत से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सीवान और नालंदा समेत कई अजला में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हुई है। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण जिले में कुछ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। सहरसा के सौर बाजार थाना इलाके से पुलिस ने दो जरायमकारों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिला के जोकीहाट थाना इलाके से पुलिस ने कत्ल मामले में फरार मुलजिम मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना इलाके से पुलिस ने 8 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य

0: आगे प्राप्त हुआ है। प्रामबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

0: का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का

0: रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में।

आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को, नमस्कार।

0: सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो तो भी शिकायत।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग।

0: और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा, लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
1: हाँ
0: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन
0: हाँ,
1: ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया
1: ज्यादा
0: ज्यादा। बिल्कुल
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए और क्या शिकायतें उनके मन में रही, इसके
0: बिल्कुल
1: बारे में।
0: बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं,
1: बहुत सही
0: वरना
1: बात कही।
0: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
0: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं,
1: बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना?
1: साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत
0: अरे
1: फेमस है,
0: वाह,
1: कोटा डोरिया, उसके बारे में।
0: बिल्कुल ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है इस साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती हैं।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती हैं, ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
0: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से, जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है। चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपने सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी
1: तो
0: तो
1: गाना बड़ा
0: बहुत
1: अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं,
0: क्या बात है।
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है,
0: अरे
1: उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है।
0: आहा
1: सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन, जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें। चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: बिल्कुल, ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर
0: कर
1: पाते हैं,
0: सकते।
1: हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे, अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो
1: जी
0: हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं
1: जी
0: कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी। और हमें भी अच्छा लगता है
1: जी
0: जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी अपनी
1: हाँ
0: तारीफों में उलझ गई है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना, असंतुलित लहजा जो है,
0: बिल्कुल
1: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं
1: जी
0: तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं
1: जी
0: तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
0: क्या बात
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो

0: में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है
1: और
0: ना।
1: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए।

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी
1: बिल्कुल
0: हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को,
1: जी
0: उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास हैं, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि
0: बिल्कुल
1: हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा है।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता, हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना
1: इसी
0: चाहिए।
1: तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कम

0: कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्म पत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बना देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो

0: सब जो मैसूर क्षेत्र है ना, वहां के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहां के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया, जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाए गए जो आरामदायक कपड़ा था, इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं, जिन्हें खट कहा जाता है, आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल। और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा, ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई। और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
0: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है, इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है, तो वहाँ की महिलाएं सिले शायद इसे ज्यादा पसंद करती है।
1: बिल्कुल सही कहा। वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं, ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना, उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट शेड के सारे। जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना, बांधनी के डाले जाते हैं, तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है। पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है, ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं, जिसे खट अभी आपने बताया, खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना, वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं, देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होते हैं ना, बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है, और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी,
1: बिल्कुल,
0: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है, गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही

0: शानदार लगती
1: क्या
0: है।
1: बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार, तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
0: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं
1: हाँ,
0: होगा
1: यानी आपने आश्वासन दे दिया
0: जी। और आश्वासन को
1: उनको,
0: लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं,
1: है
0: इसका
1: ना।
0: सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना। ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही कहा। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा आपने चंचल की, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को
0: जी
1: कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
0: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता-पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा, या लगे हम हार गए हैं। अगर
1: बिल्कुल।
0: हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो
1: बिल्कुल।
0: वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या
1: क्या
0: होगा।
1: होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है
0: जी
1: अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें, तो
0: जी
1: सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं,
0: जी
1: जी जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई
0: जी
1: आपका ये काम मैं कर दूंगा कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है, तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले, बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल,
0: जी
1: है ना,
0: सही कहा
1: कथनी और
0: आपने।
1: करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते ही हैं कि आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए, और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह ये हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास

0: पाई है। और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें 1/2 कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं,

0: अक्सर व्यंग बनता है। और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
0: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
0: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ। और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: आदिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे, कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी

0: के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी, वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमकड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
1: जी,
0: और मेरे पाठकों ने मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं, कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी जी,
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बाणी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है, राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिनबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिनबानी नहीं है, नयन और बानी है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बाणी, और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं, बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
0: जी।
1: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं, वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
0: जी,
1: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले

0: कुंदरु को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरु को।
1: जी।
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ। तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग्य मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से, चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग्य लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं, व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ, बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी, क्या बात है, फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
0: जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाए, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को।
0: जी
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: तो कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक

0: विशेषांक निकाला है रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी। बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे,
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था

0: साहित्यिक सफर रहा
1: जी जी
0: जहाँ
1: हाँ,
0: तक है,
1: ज्यादा ही रहा है,
0: ज्यादा ही रहा।
1: ज्यादा ही रहा
0: और
1: है।
0: उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त
1: जी
0: संवाहक माना जाता
1: जी
0: रहा है
1: जी
0: और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप
1: जी
0: में
1: जी
0: देखे जाते रहे हैं।
1: जी असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है, और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहां हूं ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में,
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है। और मंदाकिनी जी, मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निकषम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है, और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं, वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं।
0: जी
1: और उनका एक उपन्यास है पानी की प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं, और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला,
1: जी
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे? क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका न होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंगकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा
0: जी जी
1: है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था, तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं,
0: जी
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते हैं, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा,
0: अच्छा
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के ये संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर, और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूं, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी
0: हैं,
1: जी हाँ जी
0: उसके बाद
1: जी
0: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
1: जी मंदाकिनी जी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
0: मेरा गीत अमर कर दो,
1: ये मुझे बहुत पसंद
0: है। बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना।

0: दूर।
1: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
2: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं, ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी, ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
2: जी
1: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
2: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी

0: टकराते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषयों का बड़ा व्यापक रहा है
1: जी।
0: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
1: जी।
0: जैसे उनकी एक कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ
1: जी। बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ
1: जी।
0: मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं
1: जी।
0: तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी उन्दाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ
1: जी।
0: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा।
1: जी, जी।
0: मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए, तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया

0: अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की
1: जी,
0: सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल
1: क्या
0: से,
1: बात
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाए हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

0: बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। इसमें चर्चा होगी इस वन महोत्सव माँ के नाम एक वृक्ष विषय पर और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। संध्या 6:00 हम आपको सुनवाएंगे एक भोजपुरी लोकगीत और संध्या 6:05 पर पटना केंद्र से रिले आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वास्थ्य सुरक्षा पर दे ध्यान विषय पर, और इसके अलावा एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट वार्ता का विषय होगा बरसात में होने वाले नेत्र रोग और उनसे बचाव। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर संतोष मिश्र। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत।

पारा मेडिकल है पारस, ये प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे अपने केंद्र से शाम 7 बजे से। संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा। गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे और उसके बाद क्षमा करेंगे, शाम 7:30 बजे आप सुनेंगे पटना से रिले प्रादेशिक समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे पटना केंद्र से ही रिले जिले की हलचल। शाम 7:50 मिनट से आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

रात्रि पौने 9 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9 बजे से हमारे केंद्र से होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर सौरभ। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन। रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट

यानी 10:55 पर हम आपको जानकारी देंगे कल के हमारे कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के साजारम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे संजय गिरी के स्वर में गणेश भजन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। अब हम सुन रहे हैं केपी सक्सेना के स्वर में ये देवी भजन।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये शिव भजन। और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब समाप्त होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

सभी बहनों को मंजू बाला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगी, कुशल होंगी। हर बार की तरह हम आज भी अपने कार्यक्रम में आज करेंगे ढेर सारी बातें, जानकारी तथा मनोरंजन से भरा हमारा पिटारा बस कुछ ही देर में खुलने वाला है। तो चलिए, अब देर किस बात की, हम शुरू करते हैं अपनी बातों का सिलसिला। बहनों, हर साल जुलाई का महीना हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे मनाने का उद्देश्य है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। वन महोत्सव मनाने की शुरुआत भारत के पहले कृषि मंत्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने सन 1950 में की थी। उस समय देश में पेड़ों की कटाई बढ़ रही थी, जो चिंता का विषय थी। लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने ये अभियान शुरू किया। बहनों, हर साल वन महोत्सव मनाने की एक थीम होती है, एक विषय निर्धारित किया जाता है। तो इस साल की जो थीम है वह है एक पेड़ माँ के नाम। बहनों, माँ और पेड़ दोनों हमें जीवन देते हैं, है ना?

नहीं देते। जरा ध्यान से सोचिए कि पेड़ पर ही हमारा जीवन टिका है। पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ हवा साफ करते हैं, प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, पानी लाने में मदद करते हैं, गर्मी में छाया देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं। इसलिए इस वन महोत्सव का विषय है एक वृक्ष माँ के नाम। मतलब बहुत आसान है बहनों, अपनी माँ के नाम, अपनी सासू माँ के नाम, या जो माँ इस दुनिया में नहीं है उनकी याद में बस एक पेड़ लगा दीजिए अपने आंगन में। नीम का, तुलसी का, आंवले का, आम का, जो भी आपका मन करे। सोचिए बहनों, जब आप रसोई से खाना बनाकर निकलेंगी तो वह पेड़ आप देखेंगी तो पेड़ झूम झूम कर आपसे बोलेगा, बेटी मुझे पानी दे दो। और जब आप पानी देंगी तो सोचिए वह कितना आशीर्वाद देगा आपको। और जब 2-3 साल के बाद उस पर फल आएंगे, फूल आएंगे, तो आपको उसे देखकर कितनी खुशी होगी, कितना गर्व होगा। आप खुद से कहेंगी, ये पेड़ तो मेरी माँ के नाम का है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बहनों, हम महिलाएं अपने घर को हरा भरा तो रखती ही हैं, तो क्यों ना इस बार रसोई के साथ साथ अपने आंगन में भी हरियाली लाई जाए। एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाइए। तुलसी लगाइए, नीम लगाइए दवा के लिए, आंवला लगाइए सेहत के लिए, आम लगाइए फल के लिए, पीपल बरगद लगाइए छाया के लिए। तो आइए बहनों, आज हम एक संकल्प लें, मैं अपनी माँ के नाम एक पेड़ ज़रूर लगाऊंगी, उसे रोज़ पानी दूंगी, उसे बड़ा करूंगी। ये पेड़ हमारे बच्चों को भी सिखलाएंगे कि प्रकृति से प्यार कैसे किया जाता है। अपनी माँ के प्रति प्यार प्रदर्शित करने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता बहनों। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाइए, एक पेड़ अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाइए। और इस चर्चा के बाद आइए, वक्त हो चला है कि हम आपके साथ मिलकर गीत सुने, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इस बार की थीम है एक पेड़ माँ के नाम। बहनों, माँ और पेड़ दोनों हमें जीवन देते हैं, है ना। माँ की दिनचर्या क्या होती है? सबसे पहले वह उठती है, सुबह उठकर रसोई घर में जाती है, अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाती है, उन्हें खिलाती है। ठीक वैसे ही पेड़ भी तो हमारा घर आंगन साफ करते हैं। हमें क्या

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो हर गर्भवती माँ और धात्री माँ के लिए ज़रूरी है। जी हाँ बहनों, वह योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत सन 2017 में की गई थी। इसे PMMVY के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का मकसद है बहनों, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक मदद देना, माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ध्यान रखना और काम से छुट्टी के दौरान होने वाली आय की कमी को पूरे करना। इस योजना में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। यह सीधे आपके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था की जानकारी और ANC रजिस्ट्रेशन के बाद दी जाती है। दूसरी किस्त 2,000 रुपये 6 महीने बाद कम से कम 1 ANC चेकअप और गर्भवती होने की जानकारी देने पर, और तीसरी किस्त 2,000 रुपये बच्चे के जन्म, रजिस्ट्रेशन और बच्चे के टीकाकरण शुरू होने के बाद। ये पैसा पहले बच्चे के लिए मिलता है। पैसा DBT से सीधे माँ के जनधन खाते में आता है। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन महिला इससे आवेदन कर सकती है। तो 18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। सरकारी

सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल में डिलीवरी होनी चाहिए और यह योजना पहले बच्चे के लिए है जैसा कि हमने बताया अभी। इसके लिए आप आंगनबाड़ी केंद्र, आशा दीदी, एएन दीदी और नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर आवेदन कर सकती हैं। आपको अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एमसीपी कार्ड लेकर जाना है। बहनों, यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस पैसे से गर्भवती अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है। पौष्टिक आहार, फल, दूध, हरी सब्जी का सेवन करना गर्भावस्था में स्वस्थ शिशु को जन्म देने में मदद करता है। इसलिए आज मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि इस योजना का लाभ जरूर लें। अगर आपके घर में या पड़ोस में कोई गर्भवती बहन या बेटी हो तो उसे इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं। ध्यान रखें बहनों, कोई भी जानकारी के अभाव में इस योजना से वंचित ना रह जाए। हमेशा याद रखें, स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार, तभी होगा हमारा स्वस्थ भारत।

और अब बात करते हैं एक ऐसे अभियान की जो हमारे गांव, हमारे ब्लॉक को नंबर वन बनाने के लिए अभी चल रहा है, संपूर्णता अभियान। बहनों, ये अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। देश के 500 से ज़्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में 3 महीने तक ये विशेष अभियान चलता है। इसका लक्ष्य है हमारे ब्लॉक में चल रही 6 बड़ी सरकारी योजनाओं को 100% लोगों तक पहुंचाना। ये 6 योजनाएं कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहला है स्वस्थ ब्लॉक, यानी आपके ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं की सही देख रेख हो रही है या नहीं। ANC, कुपोषण मुक्त बच्चे। दूसरा है समृद्ध ब्लॉक, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि स्वास्थ्य कार्ड। तीसरा है शिक्षित ब्लॉक, स्कूल में नामांकन सही तरीके से हो रहा है नहीं, साक्षरता दर कितनी है। उसके बाद चौथे नंबर पे है संपन्न ब्लॉक, सामाजिक सुरक्षा उज्ज्वला गैस योजना इसके तहत आता है। उसके बाद सुशासन वाला ब्लॉक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि बातें देखी जाती हैं इसके तहत। और सबसे अंतिम यानी छठा है स्वावलंबी ब्लॉक, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा लोन आदि बातें इसके तहत होती हैं। बहनों, पहले क्या होता था कि योजना तो बनती थी पर कई लोग जानकारी के अभाव में छूट जाते थे। संपूर्णता अभियान में सरकारी अधिकारी, आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, पंचायत प्रतिनिधि सब मिलकर घर घर जाते हैं और सर्वे करते हैं कि किसको क्या सुविधा नहीं मिली, किसको सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को लाभ मिले, यही इस अभियान का उद्देश्य है। जैसे अगर कोई गर्भवती है तो PMMVY का फॉर्म भरवाना, अगर कोई किसान है तो KCC बनवाना, अगर घर में गैस नहीं है तो उज्ज्वला कनेक्शन उसको मिलना चाहिए, अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी पेंशन फिक्स होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को लाभ मिले, इस लाभ से कोई वंचित ना रहे, संपूर्णता अभियान का यही उद्देश्य है। अब इसमें आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? बहनों, इस अभियान में आपकी भूमिका सबसे ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने गांव की आंगनबाड़ी, पंचायत भवन में जाकर पूछें कि संपूर्णता अभियान में क्या क्या हो रहा है और इसकी जानकारी भी दें। अगर पड़ोस में या आपके परिवार में कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसका नाम सूची में जुड़वाएं, सहयोग करें। जब सर्वे की टीम आए तो सही जानकारी दें और दस्तावेज दिखाएं। बहनों, याद रखिए, सरकार जब सुविधा दे रही है तो हमें उसे लेना है और दूसरों तक पहुंचाना है। तो बहनों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि मेरा ब्लॉक, मेरा गर्व, संपूर्णता अभियान को बनाएंगे सफल। जब हमारा ब्लॉक

हमारा गांव शत प्रतिशत संतृप्त होगा तो हमारा गांव विकसित होगा, हमारा परिवार खुशहाल होगा। और अब इसी के साथ आइए सुनते हैं एक गीत।

और अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है। चलते चलते हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संतोष कुमार की। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

सुधा सिन्हा के स्वर में आप सुन रहे थे ये बरसाती लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

कह लें, वो कह लें कि ए बारे में बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचना भेजे के निर्देश देहल गई बा। वो आगे कहलें कि मास्टर के स्थानांतरण खातिर भी कार्यक्रम जल्दी जारी कर देहल जाए। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल कहलें कि अब राजस्व विभाग के सारा काम ऑनलाइन कर जाए। पटना में पत्रकारों से बातचीत में वो कहलें कि कुछ मामला में फर्जी सिग्नेचर के जरिए दस्तावेजन के दुरुपयोग के मामला सामने आयल रहे, ऐसे में फर्जीवाड़ा के रोके खातिर अब डिजिटल सिग्नेचर से सारा काम ऑनलाइन कल जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहले बने कि उनकर मंत्रालय पर कम बरखा के कारण बनल स्थितियों पर लगातार नजर बनौले बा। वो आगे कहले कि अल नीनो के प्रभाव से कम बरखा वाला बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलन के निगरानी कल जा रहा बा। श्री सिंह बतौले कि सरकार कोनो भी परिस्थिति से निपटे खातिर पूरा तैयार बा। शिक्षा मंत्रालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जिलन खातिर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर साल 2025 खातिर रिपोर्ट कैले बा। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 गो राज्यन में स्कूली शिक्षा के स्थिति चिंताजनक बा। उहे चंडीगढ़ इस सूची में देश भर में पहल का स्थान पौले बा। गौर करे के बाद बाकी भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व के सबसे बड़का शिक्षा प्रणालियन में से एगो बा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद 2 गो डॉक्टरन के कारण बताओ नोटिस जारी कैले बाड़े। पटना में पत्रकारों से बातचीत में वो कहलें कि निरीक्षण के बेरा एगो डॉक्टर ड्यूटी पर ना पहुंचल रहे, वह में दूसरका डॉक्टर पर मरीज के जाँच खातिर अपना निजी क्लिनिक पर भेजे के आरोप बा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार राज्य के 2 दिवसीय दौरा पर पटना पहुंची हैं। श्री नितिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट खातिर हो रहल उपचुनाव के तैयारी के भी समीक्षा करी हैं। साथ ही NDA के घटक दलन के वरिष्ठ नेता लोग के साथ बैठक करी हैं। राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय में 927 पदन पर जल्दी बहाली शुरू कैल जाए। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री रमा निषाद आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कहली। वो आगे बतौली कि नया भर्ती से विद्यालय सब में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश संगठन के नया टीम के घोषणा कर दिले बा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बतौले कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 गो उपाध्यक्ष, 38 गो महासचिव और 74 गो सचिव बनावल गई बा। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार के एक बार फेनु पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाओल गई बा। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामला में राज्य सरकार के जांच रिपोर्ट दाखिल करे खातिर 2 हफ्ता के अधिका समय मिलल बा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग सरकार के अनुरोध के स्वीकार करत मामला के अगला सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित कैले बा। आयोग अपना आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन के अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देवे पर भी विचार करे के कहलस, हालांकि मुआवजा राशि अभी तय नहीं भइल। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गई बा। राज्य भर में बरखा बरसता। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई गो जिलन में हल्का से मध्यम बारिश भइल है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और बिहाने सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलन में कुछ स्थान पर भारी बारिश हो सकेला। उहे भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज में भी बरखा के संभावना बा। पूर्वी चंपारण जिला के भोपतपुर थाना से पुलिस जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़ल एगो रैकेट के खुलासा कैले बा। पुलिस 2 गो तस्करन के 1.26 करोड़ रुपया के नकली नोट के साथ गिरफ्तार कैले बा। इनके पास से 25 लाख रुपया के

0: है नोट, 13 लाख रुपया नगद, सोना के 38 गो बिस्किट, हथियार, गोली और एगो गाड़ी बरामद कैले बिया। मामला के जांच जारी बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। श्रोता भाई देखी कतनों धन कोई कमा लेवे, चाहे कतनों महंगा कपड़ा पहरी गहना पहरी, चाहे कतनों महंगा गाड़ी पर चली, कतनों बड़का महल में रही, बाकी अगर राउर स्वास्थ्य सही नहीं खे तो सह बेकार बा। कहल गई बा कि स्वास्थ्य ही धन है। कतनों छप्पन भोग रउरा सामने रखल होखे, बाकी अगर तबियत सही न होखे तो रउआ खातिर उ बेकार बा। ऐसे स्वास्थ्य के सुरक्षा पर जरूर ध्यान देवे के चाहिए, बहुत जरूरी बा। देखी स्वास्थ्य खातिर हमनी के मोटा अनाज भी बहुत जरूरी बा। डॉक्टर लोग के सलाह बा कि हमनी के मोटा अनाज जैसे हो गई रउरा लोबिया हो गई, राजमा हो गई, सोयाबीन हो गई, इस सब के अंकुरा के खाए के चाहिए। एकरा में मूंगफली के शामिल ना करे के चाहिए। लेकिन मोटा अनाज जैसे मकई हो गई रउआ, बाजरा हो गईल, इस सब के रउरा बाटे तवन खाए के चाहिए। राई हो गईल, तो इस सब के खाए से का होला कि शरीर में रउरा जौन फैटी लीवर बा तौन कम रहेला, तो इस सब खाइल बहुत जरूरी बा। आजकल देखते बने कि आजकल के कम उम्र के बच्चा भी बहुत मोटा मोटा हो जाता, तो एकर कारण बाटे कि खान पान दूषित बा। ऐसे ओकरा के शरीर में ज़्यादा वजन हो जाता, आ ज़्यादा वजन के चलते का होता कि शरीर में कई एक तरह के रोग हो जाता। तो ऐसे हमनी के खान पान पर जो ध्यान दिहल बहुत जरूरी बा। आ देखी हमनी के आज यही पर बातचीत करे के बाटे कि स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देवे के चाही। एकर अलावे हमनी के प्रेम रंजन सिंह से गीत गौनई के झूमर के आनंद लिहल जाए, बरसाती झूमर के। आ एक बाद एगो भेंट वार्ता के माध्यम से जानल जाए कि बरसात में होखे वाला नेत्र रोग और बचाव के बारे में, ये विषय पर जानकारी देव डॉक्टर संतोष मिश्र। यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, तो हमनी के सुनल जाए। एकरा बाद एक जानकारी के माध्यम से जानल जाए कि साइबर सुरक्षा जागरूकता काहे जरूरी बा। एकरा बाद चलत चलत मौसम मिजाज पर भी एक नज़र डालल जाए। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हमने कहनी है जबकि मैंने स्वास्थ्य के सुरक्षा पर ध्यान देवे के बा जौन कि सबसे बहुत जरूरी बा, तो हमनी के ओह पर ध्यान दिहल बहुत जरूरी बा। देखी श्रोता भाई, स्वास्थ्य के सुरक्षा जौन बाटे ओकरा के रउआ अपना ओकरा में संतुलित आहार लिहल सबसे जरूरी बाटे। संतुलित आहार अगर न लेब तो कई तरह के रोग रउरा के आके घेर लीही। तो संतुलित आहार लेवे के चाही, आ कम से कम 30 मिनट व्यायाम करे के चाही रोजाना। आ एकरा बाद 7 से 8 घंटा के नींद पर्याप्त लेवे के चाही। एकरा साथ ही खुद के हाइड्रेटेड रखे खातिर तनाव से बची या समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच अवश्य करवावत रही। भोजन में ताज़ा फल, हरा सब्जी, सबूत अनाज और प्रोटीन के शामिल करी। चीनी, नमक आ डिब्बा बंद खाद्य पदार्थन के जौन कि आवेला ओकर सेवन बहुत कम करी, कम से कम करी। अच्छा एकरा बाद रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योगा जौन करतनी उ तो जरूरी बा, लेकिन एकरा अलावे सैर भी अवश्य करी। एकरा से का होला कि वजन नियंत्रित रहेला आ साथ साथ हृदय भी मजबूत होला। आ मानसिक आ शारीरिक ऊर्जा खातिर हर रात कम से कम 7 से 8 घंटा पर्याप्त नींद लेही। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास यानी कि 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीही। का होला कि पानी पिए से रउ जौन शरीर में विषैला तत्व बा उ बाहर निकलेला। तनाव जौन बाटे एकरा खातिर तनाव

बंधन खातिर मानसिक शांति खातिर ध्यान करी आ अपना पसंद के शौक के समय निकाली। जैसे रोड़ा जहाँ अच्छा लागत होके, पार्क में टहलल अच्छा लागल होके, गाना सुनत अच्छा लागल होके, या कोई साथी मित्र साथे समय बितावल अच्छा लागत होके, वो बहुत जरूरी बा। कोनो भी बीमारी से बचे खातिर ओकरा के शुरुआती चरण में पकड़े खातिर साल में एक बार हेल्थ चेक रोड़ा जरूर करवाई। तो ऐसे देखी हमनी के स्वास्थ्य बहुत जरूरी बा। मोटा अनाज खाना, योगा व्यायाम करना, टहलना, पानी पीना, नींद पर्याप्त लेना। अब का करतन आदमी के मोबाइल देखे के चक्कर में 1 बजे 2 बजे रात के सुत तड़न, तो उन्हें भी लेट से सुत तड़न, इन्हें भी लेट से जागत तड़न, लेकिन उस सही नहीं खेर। वह समय से सुती हैं, समय से जागी। कम से कम प्रयास करे के चाहिए कि 10 बजे तक सुत जाई आ कम से कम 5 बजे तक रुआ जाग जाई। एक बाद अपन नित्य क्रियाक्रम करके अपन टहले योगा जौन भी करे के बाद अपन समय से करी। देखिए वही चीज़ बाटे कि समय से करी तो फायदा करला, कुछ समय करी तो हानि भी करेला। तो देखिए इस तरह हमनी के स्वास्थ्य संबंधी कि मैंने सुरक्षा पर कैसे ध्यान देवे के चाही। आ अब हमनी के तनी मन मनसाइन कल जाओ गीत गौनई के आनंद लेके। तो कलाकार बनी प्रेम रंजन सिंह, तो सुने के यहाँ से बरसाती झूमर।

अरे की टिप टिप बदरा का बरसेला, टिप टिप बदरा का बरसेला, अरे मोरे अंगनवाना, अरे मोरे अंग

0: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
0: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 870-001-4242।
0: नंबर फिर लिखी 870-001-4242।
2: देखिए अभी हमनी के संदेश से पहले सुनत रहें जा गीत कि टपा टपा बरसे सवानवा सैयाना ले गईले गवानवा ना। इतना बढ़िया गीत प्रेम रंजन सिंह सुनैनी कि सुन के मन एकदम झूम गई। आ इतना बढ़िया गीत सुनैला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई अभी हमनी के गीत गौने के आनंद लेते रहें जा। अब हमनी के जैसा कि कहनी हो जाए कि एगो भेंट वार्ता के माध्यम से जानल जाए कि बरसात में होखे वाला नेत्र रोग ओकरा बचाव के बारे में, तो हमनी के विषय पर जानकारी देव डॉक्टर संतोष मिश्र। यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, तो सुने के यहाँ सभी से।
3: श्रोताओं आज हमारे बीच डॉक्टर संतोष मिश्र हैं, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम लोग जानेंगे कि बरसात में होने वाले नेत्र रोग और उनसे बचाव कैसे किया जाए। तो डॉक्टर संतोष मिश्र जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि बरसात में किस तरह की बीमारियां नेत्र संबंधी होती हैं।
4: जी जी, पहले मैं आपको धन्यवाद दूं बुलाने के लिए। जो ही बरसात शुरू होती है तो उसके साथ कुछ बरसात की बीमारियां होती हैं जो कि बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो उसमें दो बीमारियां बरसात में जो होती हैं आँख की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक होती है जो कि एलर्जी के चलते हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है इन्फेक्शन, जिसको हम लोग संक्रमण कहते हैं
3: जी।
4: तो एलर्जी में क्या होता है कि बरसात में जो ही पानी पड़ता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे, बहुत सारे जो पेड़ हैं जो कि जो उग जाते हैं, तो उनके जो फूल के जो कण होते हैं, मतलब पराग कण जो होते हैं, या उनके पत्तों के चलते कुछ एलर्जी की जो बीमारियां हैं बरसात में बढ़ जाती हैं।
3: जी जी।
4: दूसरा हो गया कि बरसात के चलते क्या होता है कि गंदे पानी के चलते बहुत सारी इन्फेक्शन जो होता है वो आँख, हाँ
3: जी।
4: तो उस संक्रमण के चलते भी आँखों में बहुत सारी बीमारियां होती है।
3: किस तरह की बीमारियां होती हैं एलर्जी के चलते?
4: एलर्जी के चलते लोगों को आँखों में खुजली होना, आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, ये लोग कंप्लेन करेंगे कि मुझे दो दिन चार दिन से आँखों में खुजली हो रही है, आँखों से पानी आ रहा है, आँख लाल हो गया है, मेरी आँखें गड़ रही हैं। तो इसमें एलर्जी भी एक कारण हो सकता है, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। और भी कारण हो सकते हैं लेकिन एलर्जी बरसात के मौसम में एक कारण आपको इसको हटाना होगा कि एलर्जी है या नहीं है। तो एक एलर्जी हो गया। दूसरा जो कारण है कि हो सकता है कि गंदे पानी में वो आए हों तो उसके चलते आँखों में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको हम लोग संक्रमण बोलते हैं। वो संक्रमण वायरस के चलते भी हो सकता है, बैक्टीरिया के चलते भी हो सकता है, फंगस के चलते भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन मुख्यतः हम लोग को दो भागों में बांट लेना है कि या तो ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है।
3: तो आम आदमी कैसे समझेगा कि एलर्जी है या इन्फेक्शन?
4: हाँ हाँ, तो उसके लिए तो

0: आपको अपने बगल के जो भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आपको सलाह लेना है।
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: वार्ता का मेन उद्देश्य यही है कि आँख जो होता है बहुत ही एक भगवान का दिया हुआ एक नेत्र, ये एक अनमोल है, तो
1: हाँ
0: इसको आप मैंने लापरवाही नहीं बरते। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो बगल के नेत्र रोग विशेषज्ञ या जो भी जो हैं जो नेत्र रोग के एक्सपर्ट हैं उनसे एक बार जाकर आप मिल लें।
1: अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस बरसात के मौसम
0: हाँ,
1: में?
0: इसमें कुछ ध्यान देने जो बातें ये हैं कि बरसात में बच्चों को एलर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कटार बोलते हैं,
1: जी
0: मेडिकल उसका टर्म है स्प्रिंग कटार। तो बच्चों के दोनों आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी गिरेगा, वो हमेशा आंख रगड़ेगा, तो ये बच्चों में कॉमन है। ऐसा देखा गया है कि 5 साल से लेके 15 साल के बीच के बच्चों के कॉमन होता है, तो ये एलर्जी के चलते ही होता है।
1: जी
0: तो उन बच्चों को अपने जो नेत्र रोग के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, और कुछ सावधानियां इसमें ये बरतनी है जैसे कि बच्चों को बोल देना है कि अपने आंखों को आप रगड़े नहीं, या गंदे पानी से दूर रहें, या कोई भी दवा बिना पूछे या नेत्र रोग के सलाह के बिना नहीं आंखों में डालना है।
1: जी और आंख आना इस समय एक आम बीमारी होती है कि लोगों की आंखें आ जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं,
0: जी,
1: तो वो कैसे हो?
0: ये आंख आना जो होता है इसको ही हम लोग इन्फेक्शन या संक्रमण बोलते हैं।
1: अच्छा, तो
0: तो
1: इससे लोगों में ये बहुत तेजी से फैलता
0: ये तेजी
1: है।
0: से फैलता है चूंकि इन्फेक्शन है। अगर आपकी आंखें में अगर इन्फेक्शन हो गया है, आंख आपकी आ गई है, तो अगर आप जिस सोसाइटी में जाएंगे जहाँ भी 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो ये आप मतलब दूसरे को भी आप दे सकते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए जब आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका उचित उपचार करना चाहिए, और आपको मतलब कि ऐसी सावधानियां लेनी चाहिए कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएं या थोड़ा सा मतलब दूर रहें कि और लोग इन्फेक्शन नहीं फैले।
1: जी तो उसके लिए आम लोग कैसे बचें अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो?
0: तो उसके बचाव के तरीका ये है कि एक काला चश्मा आता है जिसको डार्क ग्लास बोलते हैं, तो
1: जी
0: डार्क ग्लास आप पहन कर रहे हैं,
1: जी
0: और जो आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ जो मेडिसिन देते हैं उनको आंखों में डालें। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाता है, 2 से 3 दिन में कंट्रोल हो जाता
1: आप
0: है।
1: एक डॉक्टर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं,
0: जी,
1: काला चश्मा ही क्यों पहना जाए?
0: काला चश्मा इसलिए पहना जाता है कि काला चश्मा जो होता है एक टोकी उसका जो एरिया होता है पूरा बड़ा होता है, पूरी आंखें कवर्ड रहती हैं,
1: जी
0: और थोड़ा सा डार्क ग्लास होने के चलते सनलाइट में सूरज की रोशनी में वो आदमी को थोड़ा राहत होती है, ज़्यादा
1: जी
0: चमकता नहीं है।
1: जी
0: ऐसे अगर आप सिंपल ग्लास पहनेंगे तो वो मैक्सिमम लाइट आंख में जाएगी, तो
1: हाँ
0: आंख
1: हाँ
0: आपकी चमकेगी और आपको थोड़ा दिक्कत होगा।
1: जी तो
0: और
1: इन्फेक्शन से उसका क्या संबंध है?
0: इन्फेक्शन से संबंधी है कि जैसे एक आई के ऊपर में एक आपका आ जाता है पर्दे टाइप का,
1: जी
0: तो आपके जो बैक्टीरिया एक ऐसे ओपन रहेगा तो ज़्यादा मतलब सामने जा सकता है,
1: जी जी
0: और अगर आप ग्लास पहन लेंगे तो एक तो मतलब जस्ट एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है,
1: जी जी जी
0: तो उससे कम हो जाता है, मतलब एक लेवल ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है।
1: जी देखा जाता है कि देहात में जैसे ही आंख आती है, लोग एक देहातों में दवा बिकती है छोटी सी जिसको ढेलुआ दवा कहते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: वो लेकर के और लगा लेते हैं तुरंत, क्या ऐसा करना चाहिए क्या?
0: कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन में वो जो दवा है वो काम नहीं करती है। तो पहले कि किस दवा ऊपर क्यों हुआ है देखना होगा, अगर एलर्जी है तो उस दवा से कुछ नहीं होगा, ये एलर्जी का अलग ट्रीटमेंट है।
1: जी
0: अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन किस तरह का है वो हम
1: जी
0: लोग देख के लगभग एक अंदाज लगा लेते हैं कि ये किस मतलब टाइप का इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग एंटीबायोटिक दवाएं हैं।
1: जी
0: तो सब एंटीबायोटिक दवा सब में काम करेगी ऐसा ये नहीं है,
1: जी
0: तो वो जो दवा है गांव वाली काम कर भी सकती है नहीं भी काम कर सकती है।
1: जी
0: तो अगर काम कर गई तो ठीक है, अगर नहीं काम कर रही है 1-2 दिनों में तो आप तुरंत जाकर सलाह लें।
1: उससे हानि होती है कि
0: हाँ,
1: नहीं?
0: एकदम हानि होती है, बहुत सारे लोग जो है कि उसका बहुत मिसयूज करते हैं, और जो चीज़ अगर कोई दूसरी बीमारी है उसको ये आँख खाना समझ के उसको डालते रहते हैं और बीमारी बढ़ते जाती है,
1: जी
0: और लास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि आँख को निकालना पड़ जाता है, आँखें
1: जी
0: खराब हो जाती है।
1: तो दूसरी बीमारी कौन होती है इस बरसात में?
0: बरसात में तो ऐसे बीमारी तो मुख्यतः यही होती है, जैसे कि एक बीमारी जो आगे बढ़ के कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं, आंखों में घाव, ये
1: जी
0: बहुत बहुत खराब बीमारी है आंखों के लिए, इसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: जी जी
0: तो कॉर्नियल अल्सर के मरीजों में वो लोग दवा हमेशा डालते रहते हैं, और क्या होता है कि उसका अल्सर का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग होता है, उसको बहुत हम लोग एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं कॉर्नियल अल्सर का, उसकी बहुत सारी दवाएं होती हैं, तो वो दवा नहीं चल के वो सिंपल दवाई लोग डालते रहते हैं, तो उसमें ऐसा कई बार होता है कि आंखें खराब हो जाती है और
1: जी
0: अंतिम समय में अस्पताल में आते हैं जिसमें कि अब कुछ कर पाना भी मुश्किल हो जाता है।
1: जी जी
0: तो इसमें सलाह यही है कि ऐसा कोई हो तो तुरंत अपने बगल के नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले लें।
1: जी जी और बच्चों में भी अक्सर देखा जाता

0: है कि आँख के साथ साथ कान भी बहने लगता है इस
1: हाँ
0: समय इस मौसम में बरसात में, तो क्या वो भी किसी एलर्जी या इन्फेक्शन के?
1: हाँ वो भी कान बहना भी इन्फेक्शन के चलते होता है, बच्चों में बहुत कॉमन है कान बहना।
0: जी जी
1: तो वो भी जैसे पानी कानों में चला गया उसके चलते जो झिल्ली होती है कान की
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: अगर चोट पहुंच गया तो उसके चलते भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन के चलते ही कान बहता है।
0: जी
1: और भी बहुत सारे कारण हैं कान बहने के, वो तो हैं ही, लेकिन इसमें मेन बरसात का मौसम में हम लोग को संक्रमण पर ध्यान देना है कि संक्रमण कम हो। और
0: जी
1: ये बच्चों में बहुत कॉमन है चूँकि बच्चे बहुत केयर करते नहीं हैं, तो गंदे पानी के संपर्क में आते हैं और उसके चलते जो है उनको आँख या कहीं का भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है।
0: जी
1: तो ये सावधानियां बरतना है कि अगर पानी पड़ रहा है तो बच्चों को थोड़ा दूर रखना है, या अपना छाता लेकर या कोई भी बरसाती पहनकर, या मतलब उचित उसकी सावधानियां लेकर बरसात में जाना है।
0: जी एक डॉक्टर के रूप में आप आम आदमी को क्या सलाह देंगे कि इस बरसात में जो आँखों में जो रोग होते हैं उसके लिए क्या कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: पहली सावधानी यही है कि जैसे कि बरसात में अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो छाते का इस्तेमाल करें, किसी भी तरह गंदे पानी से बचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बरसात में जो हम लोग का एक तो धारणा है कि बरसात में पानी गिरता है वो साफ ही होता है, ऐसा नहीं है। तो गंदे पानी से आपको बचना है, छाते लेकर चलिए या बरसाती लगा कर चलिए और गंदे पानी से अपने को बचाइए। अगर इन्फेक्शन या एलर्जी है तो अपने बगल के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए और उचित दवा से आपको ये ऐसी बीमारी है तुरंत ठीक हो जाती है, इसमें
0: जी
1: ज़्यादा कोई परेशानी नहीं
0: जो
1: होती।
0: काले चश्मे की हम लोग बात कर रहे थे,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: जो मरीज है वो काला चश्मा पहने या जो बचना चाहता है वो काला चश्मा
1: नहीं,
0: पहने?
1: जो मरीज है वो तो जरूर पहने,
0: जी
1: और बचने वाले के लिए काले चश्मे की जरूरत नहीं है, वो
0: जी
1: जस्ट एक गोगल्स आता है वो भी पहन सकते हैं,
0: जी
1: या सिंपल जो उनका पावर का ग्लास है वो भी पहन सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी तो डॉक्टर संतोष मिश्र जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखिए श्रोता भाई, अभी हमने के एगो भेंट वार्ता के माध्यम से जानत रही जाए कि बरसात के समय में मतलब नेत्र रोग में जौन बाटे बीमारी होता नेत्र में, एकरा से कैसे हमने के बचे के चाही। तो देखिए यहाँ के डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया बतौनी कि मतलब हमने के देखी बरसात के पानी से भी बचे के चाही। आ बरसात में सबके चलते इन्फेक्शन होला, आँख में जौन बाटे अल्सर भी हो जाला, तो आदमी का करलन कि अपना मन से दवाई कोई छोटा मोटा दुकान पर से जाके ले आवेलन। तो देखिए उ सब ना करे के चाहिए, का होला कि अब ज़्यादा दिन उ सब दवाई डाला फायदा ना हुई तो लास्ट में आँख खराब होके डर है, जब आदमी लास्ट में डॉक्टर के यहाँ जालन तो मतलब उस समय तक ज़्यादा खराब हो जाला। तो ऐसे हमने के बचे के चाहिए। अब बरसात में खास कर देखे निकल कि आँख खाइल बाटे या कोनो तरह के आँख में बीमारी बात ये ज़्यादा होला, तो ऐसे हमने के बच के रहे के चाहिए। तो देखी डॉक्टर साहब इतना बढ़िया जानकारी देला खातिर संतोष मिश्र के बहुत बहुत धन्यवाद। आ इतना बढ़िया फरिया फरिया डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी पूछे नहीं, यहाँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, साइबर सुरक्षा जौन बाटे जागरूकता वो काहे जरूरी बाटे? तो देखी श्रोता भाई, साइबर सुरक्षा जौन जागरूकता ऐसे जरूरी बा कि अधिकांश जौन बाटे मान ये लापरवाही आ जानकारी के अभाव में हमनी के एकरा से ज़्यादा हानि होता। ये हमनी के संवेदनशील डेटा जैसे व्यक्तिगत पहचान, वित्तीय जानकारी आ व्यवसायिक गुप्त सूचना के हैकर्स आ साइबर अपराधियों द्वारा कैल जाए वाला चोरी या नुकसान से बचावेला। ये डिजिटल दुनिया में सुरक्षा के एगो ढाल ह। तो देखी व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षा जौन बाटे ये सुनिश्चित करेला कि और निजी डेटा जैसे बैंक विवरण, पासवर्ड आ व्यक्तिगत तस्वीर सुरक्षित रहे, जमना से कि पहचान के चोरी आ वित्तीय धोखाधड़ी के रोकल जा सकेला। एकरा अलावा देखी साइबर जौन बाटे, साइबर हमला कोनो भी व्यवसाय के पूरा तरह से ठप कर सकेला। मजबूत सुरक्षा प्रणालियन से कंपनियन के भारी राजस्व हानि मुकदमा आ ग्राहक के विश्वास टूटे से बचावल जा सकेला। एकरा अलावा देखी राष्ट्र के बुनियादी ढांचा जैसे बाटे कि जैसे बिजली ग्रिड हो गई, परिवहन नेटवर्क हो गई, रक्षा प्रणाली हो गई, साइबर हमला से सुरक्षित रखल आ राष्ट्रीय सुरक्षा खातिर अत्यंत आवश्यक बा। एकरा अलावा देखी जैसे निजी गोपनीयता बाटे, एकर सम्मान बा कि इंटरनेट पर सुरक्षित जौन ब्राउजिंग आ संचार बनाए रखे खातिर साइबर सुरक्षा जरूरी बा। ऐसे रो अपन ऑनलाइन गतिविधि पर अनाधिकृत नज़र रख सकीला। आ देखी साइबर सुरक्षा से जुड़ल बहुत सारा जानकारी बा, एकरा में कर्मचारियन के फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, मेलवेयर,

असुरक्षित डेटा प्रबंधन जैसे खतरन के पहचाने में मदद करेला। सशक्त जागरूकता जन बाटे कार्यक्रम कर्मचारियन के व्यवहार के लिखित नीतियन प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग अपेक्षा से जोड़ के अनुपालन सुनिश्चित करेला। आ एक अलावे देखी सरकारी योजना के लाभ भी एक मिलेला। साइबर साक्षरता के जरिए रउआ फर्जी वेबसाइट और नौकरी के झूठा प्रलोभन जन फ्रॉड लोग दे रहा बन ओकरा से भी रउरा बच सकीला। साइबर खतरन से बचे खातिर हमेशा मजबूत पासवर्ड के इस्तेमाल करी। कोई के साथ अपना OTP जन बाटे उ साझा न करी और ऑनलाइन कुछ भी करे से पहले प्रामाणिकता के जाँच कर लीं। रउआ साथे भी अगर कोनो ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना भइल होके तो रउआ एकदम एकरा से सावधान रह सकीला। ऐसे कि अधिकांश साइबर जन बाटे अपराध मानवीय लापरवाही या जानकारी के अभाव में ही होला। ई रउआ के अपन संस्था के वित्तीय नुकसान डेटा चोरी या पहचान के धोखाधड़ी से बचावेला। देखिए वित्तीय सुरक्षा जन बाटे डिजिटल लेन देन के दौर में सतर्कता रउआ के ऑनलाइन बैंक फ्रॉड लॉटरी स्कैम और फर्जी कॉल से भी बचावेला। आ एकरा अलावे जैसे मैलवेयर फिंसिंग से बचाव खातिर जागरूक लोग अनजान लिंक पर क्लिक करके या संदिग्ध ऐप्स डाउनलोड करे से बचेलन जवना से कि रउआ सुरक्षित डिवाइस रख सकीला। तो ऐसे देखी हमनी के साइबर सुरक्षा के जो जागरूकता बाटे तो बहुत ही जरूरी बाटे। साइबर सुरक्षा से हमनी के बहुत लाभ बाटे आ हमनी के एकरा से बच के हमेशा रहे के चाही। आजकल देखा तनी कि मैंने कई एक तरह के ठग निकल बन आ कैसे कैसे रउआ मतलब जान तनी कि हमारे बैंक में पैसा सुरक्षित बा आ रउआ से लूट लेते हैं और मोबाइल मांगत हूँ कॉल करे खातिर वो भी देखी कोई अनजान आदमी के अपन मोबाइल देवे लायक नहीं के बहुत कहें कि बहुत परेशानी में बानी एगो कॉल करे के बा आ वही में रउआ अपना जुड़ल रहन अपना संस्था से आ बात कली हन कि मतलब हम पापा से बात करतनी फलना से बात करतनी आ वही में OTP जौन बाटे तो रउड़ा के आ जाइ मोबाइल पर बता दिहन और बैंक के पैसा सब लुटा जाता। ऐसे बहुत सावधान रहे के बाटे। ये चलते हमनी के साइबर सुरक्षा के जागरूकता जौन बाटे बहुत जरूरी बाटे। तो ये तो अभी हमनी के बात करते हैं जो साइबर सुरक्षा के जागरूकता काहे जरूरी बा। आए अब तनि चलत चलत एक नज़र डाल जाइ मौसम मिजाज पर। तो देखी श्रोता भाई मौसम के पूर्वानुमान पर जौन बाटे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि जौन बाटे 8 से 12 जुलाई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले या हल्का मध्यम वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम बाटे 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्षित आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा भी चले के दक्षिणी और पूर्वैया हवा चले के अनुमान लगावल जाता। इस तरह हमनी के मौसम के पूर्वानुमान लेकिन हमनी के मौसम के देखते हुए किसान भाई लोग के हमनी के कुछ सलाह मशविरा दही ला जा। तो मौसम के तो चेतावनी बाकी जिला में 1-2 स्थान पर जब मेघ गर्जन हुई तो हमें वज्रपात भी हुई तेज सतही हवा भी चली आ झाँकेदार हवा चले के संभावना बा। आ किसान भाई लोग की सलाह दिया जाता कि आंधी बिजली या तेज हवा से फसलन के गिरे के आशंका रहेला। तेज से किसान लोग खेत के कार्य जनबान स्थगित करके आ फसल और पशुअन के सुरक्षित रखे के उनका के सलाह दिया जाता। आवे वाला दिन में वर्षा के संभावना के देखते हुए खड़ा फसलन में सिंचाई स्थगित कर दी आ खाद कीटनाशक के छिड़काव जन बाटे वो आसमान साफ रहला पर ही करी। आ देखी श्रोता भाई जे मतलब धान के खेती के लिए बा पिछला कुछ दिन में भइल वर्षा के जल के लाभ उठाते हुए धान के सबौर दीप किस्म जैसन प्रभात शुष्क सम्राट सहभागी के बुआई 10 जुलाई तक कर ली। बुआई से पहले बीजन के कार्बेंडा जिम के 2 किलोग्राम बीज से उपचारित करी आ 10 से 15 दिन के नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई करी। मध्यम अवधि वाला किस्म जैसे राजेंद्र नीलम राजेंद्र कस्तूरी या राजेंद्र श्वेता के रोपाई जौन बाटे एकर निराई गुड़ाई रउरा कर सकीला। आ धान के किस्मन के सबौर मोती धान सबौर सोना आदि के सीधा बुआई भी कर सकीला। मक्का खातिर खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर ही शीघ्र संपन्न करी। खेत के जोताई में 10 से 15 टन सड़ल गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का मक्का 3 गंगा 11 तो ई रउरा अच्छा रउरा पशुपालन अगर कैले बनी तो माह के अंत तक

भैंसन के बियात वाला होखस त बियाए वाला पशुअन के विशेष ध्यान रखी। गलाघोंटू आ लंगड़ी रोग से बचाव खातिर जून माह में टीका ना लगौले होखी तो एह माह में टीका अवश्य लगवा दही। आ देखी मौसम के चेतावनी के चलते आंधी तेज हवा वर्षा फसल के नुकसान फल फूल झड़ी कीट रोग प्रकोप और सब्जी और बागवानी फसलन के क्षति पहुँच सकेला और पशुअन पर भी तनाव बढ़ सकेला, ऐसे रउआ ऐसे सावधान हो जाए। तो देखी श्रोता भाई अब घड़ी इशारा करती है रउआ सभी से विदा लेवे के, तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब लीजिए सुनिए बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार चित्रगुप्त।

0: दावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पांख
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर
1: जी हाँ नंबर बा 8700001-4242

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे दंगल फिल्म का ये गीत। कुलवंत जानी ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। और अब सांझ गीत कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं गंगा किनारे मोरागांव फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहवादी की रचना है और संगीत चित्रगुप्त का।

और श्रद्धा के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं, शाम के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम पारा।

0: मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ, पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले, 9155588889855588 और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए, और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
3: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
0: हाँ।
3: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
0: जानकारियों का ही अभाव है,
3: हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है
0: जी।
3: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है, और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
0: जी।
3: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई
0: जी।
3: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
0: जी,
3: है
0: जी।
3: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
3: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है
0: जी। एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा

0: से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना। इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
0: सही।
1: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
0: सही सही सही बात।
1: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
0: सही बात है।
1: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है, कोई भी विषय हो जाए। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
0: बिल्कुल नहीं।
1: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
0: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी

0: है ना, इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का?
1: 2023 से
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा
0: हाँ।
1: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
0: कहीं
1: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है,
0: हाँ।
1: सब कुछ समान है,
0: हाँ।
1: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया, ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
0: देना, ऑक्यूपेशन
1: व्यवसाय उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा। मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों, चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते, क्षमा करेंगे गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं गुड इवनिंग। रोहतास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में। आज दिनांक 8 जुलाई 2026 को स्थानीय इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार और जिला प्रशासन रोहतास के सौजन्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम सखी वार्ता का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं और किशोरियों की समस्याओं का समाधान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोहम्मद शमीम अंसारी, जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास के द्वारा छात्राओं को महिलाओं के अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिला हेल्पलाइन तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा हिंसा की स्थिति में निडर होकर संबंधित विभाग एवं महिला हेल्पलाइन 181 की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया एवं महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होने और किशोरियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों को महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार और जिला प्रशासन रोहतास के सौजन्य से डायरी, पेन एवं अल्पाहार का वितरण किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक, महिला एवं बाल विकास निगम के पदाधिकारी और कर्मी एवं भारी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

मानसून के दौरान रोहतास ज़िले में भारी वर्षा की संभावना था। इसके फलस्वरूप जलप्रपातों एवं पहाड़ी नालों में जलस्तर के अचानक बढ़ने की आशंका को देखते हुए वन विभाग द्वारा सभी पर्यटकों एवं आम जन से अपील की है कि वे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत स्थित मांझरकुंड तथा गुप्ताधाम मार्ग पर स्थित सभी जलप्रपातों एवं जलधाराओं की यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। सभी आगंतुकों को गहरे पानी, जलप्रपातों, पहाड़ी नालों, फिसलन युक्त चट्टानों एवं खतरनाक ढलानों पर जाने से पूर्णतः बचने की सलाह दी जाती है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा के कारण जलप्रपातों एवं

नालों में बिना किसी पूर्व चेतावनी के जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ जैसी अत्यंत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसून के दौरान फिसलन युक्त चट्टानों एवं तेज बहाव जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

आज दिनांक 8 जुलाई 2026 को दिशा की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री मनोज कुमार माननीय सांसद सासाराम लोकसभा द्वारा की गई। माननीय सांसद द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। सिविल सर्जन कैमर को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी अस्पतालों में सर्पदंश के वैक्सीन हेतु प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए। सिविल सर्जन कैमूर को यह भी निर्देश दिया गया कि जिले के सभी अस्पतालों में मेन्यू के अनुसार भोजन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अन्य पदाधिकारियों को भी उनके कार्य संबंधी निर्देशित किया गया। श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में जानकारी। अब लीजिए सुनिए एक गाना।

घायल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले, शबीर कुमार और कुमार सानू की आवाज़ों में। और श्रोताओं, इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश होने से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों को की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विस्तार और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट ने टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चयन को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और नए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए 126.25 करोड़ रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया तक प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की स्वीकृति दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नामित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा। मंत्री परिषद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के विस्तार के लिए दानापुर के भुसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर 79.84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल से आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अंकेक्षण के अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा 7 निश्चय के तहत संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका मंत्रालय कम बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश वाले बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की निगरानी की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि सरकार किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: मित्रों, अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है और कल तक 24% बारिश कम हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है। हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत में

0: कहा कि इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाएगा।
1: टीचर ट्रांसफर नीति लागू है, विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे कि 25 जुलाई तक हम TRE4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में 927 पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और पदवार विवरण शीघ्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर पूरी बात रख दी है। उन्होंने बताया कि अगले 2 महीने के अंदर उन पथों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिस पर टोल टैक्स लगेगा।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल पीले नंबर प्लेट यानी व्यावसायिक व्हीकल पर ही टैक्स लगेंगे और जितने भी सफेद नंबर प्लेट हैं यानी नॉन कमर्शियल उस पर नहीं लगेंगे और आने वाला 2 महीना में सड़कें चिन्हित भी हो जाएंगी कि कहाँ टोल लगना है।
0: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: आओ। इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर

0: भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब राजस्व विभाग के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा

0: में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब राजस्व विभाग के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी।
2: अब जो भी कार्य संपादित होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही हेरा फेरी होने की संभावना रहती थी, इसलिए हम लोगों ने सभी तरह के ऑफलाइन पर रोक लगा दिया। कुछ जिला में गलत सिग्नेचर करके कुछ पेपर को उपयोग किया जा रहा, इसलिए अब ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर सारे काम ऑनलाइन राजस्व विभाग के होंगे।
1: जनता दल यूनाइटेड ने बिहार प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन को अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देने पर विचार करने को भी कहा है। हालांकि मुआवजे की राशि तय नहीं की गई है और इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत का भुगतान बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और इससे मामले की जांच या अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं होगा। पूर्वी चंपारण जिले के भोपतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को 1,26,00,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,00,000 रुपए के ट्वाय नोट, 13,00,000 रुपए नकद, सोने के 38 बिस्किट, हथियार, गोलियां और एक वाहन बरामद किए गए हैं। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8,00,000 रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अभियान चलाकर 60 लीटर नेपाली शराब के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 2,55,000 रुपए लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार।
1: भारतीय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक यूक्रेनी महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। महिला पर वैध यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों के बिना भारत में रहने तथा हरपुर सीमा के रास्ते अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 2000 बैग उर्वरक जब्त किए गए हैं तथा नकली डीएपी खाद बनाने के गोरख धंधे का भी खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। मोतिहारी में जिला उर्दू भाषा कोषांग की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद साजिद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सभी उर्दू कर्मियों को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, नियमित विद्यालय भ्रमण करने, सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में अनुवाद कर सूचना पट पर प्रदर्शित करने तथा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा मैदान से जल्द छोटे विमानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत मोतिहारी को क्षेत्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। विशेषज्ञों की टीम हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण कर चुकी है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 25 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
0: और अब प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर खाद्यान्न वितरण सेवा शुरू की गई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर प्रखंड में इस पायलट परियोजना का शुभारंभ करते हुए पात्र लाभुकों को उनके घर पहुंचकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उनके घर तक पहुंचाना है। जिले में 14 अगस्त तक चलने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित प्रयास से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील आबादी की 100% स्क्रीनिंग टीबी के लक्षण वाले लोगों की समय पर जांच तथा निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 7 से 21 जुलाई तक विभिन्न प्रखंडों में मेगा आउटरीच शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि योजना से जुड़े लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में गैस एजेंसियों के स्टॉक आपूर्ति और लंबित बुकिंग की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। नमामि गंगे मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी ने

0: संबंधित अधिकारियों को गंगा संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार, स्मार्ट जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। हाजीपुर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में सौर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी गई, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 31 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को वार्षिक अनुग्रह राशि प्रदान की गई। वहीं जिले के विभिन्न पंचायतों में पहली बार पंचायत दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला गया।
1: अभी आप सुन रहे
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: दोस्तों नमस्कार और स्नेह भरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका आकाशवाणी सासाराम में। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय रेडियो प्रोग्राम हेलो मन पसंद। और दोस्तों आज आपकी महफिल में बैठा है आपका अपना ओम प्रकाश। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से एक और यादगार सफर। अगले कुछ पलों तक हम सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मों के वे मधुर नगमे जो दिल को सुकून देते हैं, यादों को ताज़ा करते हैं और ज़िंदगी के हर रंग को सुरों में पिरो देते हैं। तो आइए अपनी सारी व्यस्तताओं को कुछ देर के लिए विराम दीजिए, दिल की धड़कनों को संगीत की लय से जोड़िए और तैयार हो जाइए अपनी पसंद के शानदार गीतों का आनंद लेने के लिए। सुरों की महफिल सजी है दिलों का पैगाम लिए, हर गीत में छिपे हैं अनगिनत एहसास लिए। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और साथ निभाइए हमारा, क्योंकि संगीत ही है जो हर दिल को जोड़ता है प्यार से। तो आइए खूबसूरत धड़कन के साथ प्यार से जोड़ते हैं इस पहले कॉल को। हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, और बताइए कहाँ से और कौन साहब हमसे मुखातिब हैं?
1: मैं जयराम बिंद चौसा गोला बक्सर से।
0: चौसा गोला बक्सर हम पहुँच गए, वहाँ की हाल चाल बताइए। गर्मी से तो निजात आप पा गए होंगे?
1: गर्मी से हल्का फुल्का निजात पाए हैं, हल्का फुल्का बारिश हो जाता है लेकिन वैसा ही मौसम है।
0: अभी गर्मी वैसा ही है, बरसात की स्थिति क्या है?
1: बरसात तो मान करके चलिए थोड़ा बहुत
0: है। सभी अन्नदाता हमारे आकाश की तरफ देख रहे थे कि भाई कब क्या हो तो हम अपने खेत में चलें। तो अब उनको खेत में जाने का समय हो गया, माकूल समय आ गया?
1: खेत में जाने का समय हो गया लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी तो अभी नहीं हुआ है। खेत तो सब सूखे हुए हैं ऐसे ही सब।
0: ऊपर वाला कभी किसी को निराश नहीं करता, जरूर देंगे। तो जयराम जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और किस फिल्म का?
1: साजन फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा
1: गीत के बोल है तुमसे मिलने की तमन्ना है।
0: मोहब्बत से लबरेज ये गीत पसंद किए हैं, उम्मीद है हमारे तमाम श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार सर,
0: जी। नमस्कार,
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: हम ओम प्रकाश आपकी सेवा में बैठे हुए हैं साहब। आप कौन साहब हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: शेख जफर हसन जिला रोहतक
0: जी।
1: 6 जुलाई को जो मैंने प्रोग्राम सुना मनपसंद, आप तो हमारा दिल बहुत खुश कर दिया। अच्छे अच्छे शेर आपने सुनाया ओम प्रकाश भाई
0: जी। जी चलिए, धन्यवाद। आप लोग जैसे श्रोताओं के प्रेम से
1: शेर का झड़ी लगा दिया हो, कोई भी मैंने सुना। शेर पर गौर कीजिए, क्या हो आईने का जब सामने वाला ना रहे।
0: क्या बात है,
1: क्या हो आईने का जब सामने वाला ना रहे, यानी हुस्न तुझे देखने वाला ना रहे।
0: बहुत खूब जफर भाई, वैसे श्रोता हैं हमारे, वैसे हमारे लिए नूर हैं, जिसके लिए तो हम तो कोहिनूर को भी छोड़ सकते हैं।
1: आप जब आते हैं प्रोग्राम तो चांद लगा देते हैं।
0: क्या बात है, मेहरबानी सब आप लोगों की है। अब बताइए जफर भाई कि आज किस गीत से आज की महफिल सजाई जाए?
1: फिल्म का नाम है हम साया से,
0: जी
1: मोहम्मद रफी ने गाया था।
0: रफी साहब की आवाज में कौन सी गीत?
1: दिल की आवाज भी सुन, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा।
0: बहुत बढ़िया जफर भाई, हम तो आज समझे कि आप एक अच्छे श्रोता के साथ आप एक अच्छे गायक कलाकार भी हैं, है ना?
1: जी सर।
0: तो चलिए जफर भाई।

0: तीन दोस्त का नाम ले लूं?
1: जी बिल्कुल लीजिए।
0: उस्मान अली अंसारी
1: जी,
0: भदरवा जम्मू कश्मीर के, पुरुषोत्तम कुमार और
1: जी
0: नौर बिहारी
1: जी। आप अपने तमाम श्रोता दोस्तों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: अब चलिए, बड़ी खुशी हुई आप हमें कश्मीर की वादियों में खींच लाए। उस खूबसूरत वादी में भी हमारे चाहने वाले हैं, आकाशवाणी सासाराम को चाहने वाले हैं। बेहद खुशी हुई, और इससे भी अधिक खुशी हुई आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ लम्हे निकालकर हमें याद किया। और बताइए, कश्मीर की वादी में क्या क्या आजकल चल रहा है?
1: आजकल यहाँ पे अमरनाथ चल रहा है यात्रा करने के लिए, बहुत स्टेटों से यात्रा करने के लिए हमारे जिले गांधरमल में आते हैं।
0: चलिए, वहाँ पर बहुत शांति है वहाँ, और आप जैसे श्रोता हमसे जुड़े रहें, वहाँ के बारे में सब कुछ बताते रहें, कम से कम वहाँ का माहौल अच्छा है ये जानकर बहुत खुशी हुई। भाई, अब ये बताइए कि आज किस फिल्म का और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे सुनना है किंग अंकल का।
0: किंग अंकल, अच्छा,
1: ऋषि कपूर का।
0: और गाने का बोल है बता दीजिए।
1: लता मंगेशकर की आवाज में है ये आंखें।
0: ये आंखें लता जी की,
1: वो
0: लता जी की आवाज में है।
1: हाँ जी, और मेरे साथ है वहाँ का एक श्रोता शेख जफर हसन।
0: अरे भाई, ये तो हमारे नियमित श्रोता हैं। आपके गीत को सुनिए, अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्ते,
0: जी। नमस्ते।
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपका रेगुलर श्रोता
0: कश्मीर से आप बोल रहे हैं?
1: लतीफ अहमद रैना।
0: रैना साहब।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार सर।
0: जी। नमस्कार सर, बोलिए क्या हालचाल है।
1: बढ़िया ही है सर। आप बताइए, आप कैसे हैं और आपके रेडियो टीम के लोग कैसे हैं?
0: बस बहुत बढ़िया है, और आप लोगों का साथ जब मिल जाता है तो और भी बढ़िया हो जाते हैं, हम भी और हमारा रेडियो टीम भी, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, आरजे और लिसनर्स एक दूसरे के पूरक हैं
0: अब ये बता दीजिए अपना नाम और अपने जगह का नाम।
1: ही। जी मैं जयप्रकाश भारती, स्टेशन रोड, बस्ती, उत्तर प्रदेश से।
0: बताइए उत्तर प्रदेश का क्या हालचाल है साहब।
1: जी बढ़िया ही है। थोड़ा सा ये है कि 2-3 दिन से मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए गर्मी से राहत है लोगों को। जी
0: बारिश भी हो रही है।
1: जी कभी कभी बारिश भी हो जा रही है। जी
0: चलिए बारिश तो और चाहिए, है ना।
1: जी बिल्कुल, बारिश काफी, मतलब किसान परेशान है। जी
0: हाँ, अन्नदाता के लिए बारिश और जरूरी है। और अन्नदाता क्यों, हम सबके लिए,
1: सभी
0: सब
1: के लिए, बिल्कुल किसानों के
0: बिल्कुल।
1: लिए और क्या पशु पक्षी सभी के लिए
0: हाँ, सभी के
1: बात
0: लिए
1: कर रही
0: बारिश
1: है।
0: जरूरी है, और गर्मी से राहत मिले ये भी हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से। कि जयप्रकाश जी, किस फिल्म का और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: ये फिल्म चश्मे बद्दूर का गीत है, आवाज है यशुदास और हेमंती शुक्ला का, और
0: चश्मे
1: मैं
0: बद्दूर फिल्म
1: कहां
0: का
1: से
0: है।
1: आए बदरा, घुलता जाए कजरा।
0: कजरा, कहाँ से आए बदरा, बहुत खूबसूरत गीत है साहब
1: मैं कुछ दोस्तों को भी याद कर लूं।
0: जी। बिल्कुल याद कीजिए साहब।
1: ये हमारे मित्र हैं, मणिया हूँ जौनपुर में जमील अहमद शाह, वाराणसी में मोहसिन अंसारी, परवेज अहमद, अशोक प्रजापति, विदिशा में सेवा लोहट भानु मेहतर, बस्ती में विनोद गोपाल पांडे।
0: अपने तमाम श्रोता दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार
1: जी, मेरा उमर पसंद खखड़ा से बोल रहे हैं।
0: और बताइए खखड़ा का क्या हालचाल है
1: जी? ठीक है, रोपनी चालू है।
0: रोपनी चालू हो गया ना
1: जी?
0: हाँ, बहुत जरूरी था क्योंकि बारिश के इंतजार में हमारे सारे अन्नदाता बैठे हुए थे और हम लोग भी बैठे हुए थे, है ना, कि कब बारिश हो और खूब मौसम बढ़िया बने कि हम लोग खेत के तरफ चलें और अन्न उपजाने के लिए आगे बढ़ें। तो अब तो लगभग खेतों में किसान नजर आ रहे होंगे। अब आज क्या आप सुनना चाहते हैं खखड़ा में?
1: जी, कर्ण अर्जुन का गाना जो है वो सुनना चाहते हैं।
0: कर्ण अर्जुन फिल्म का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं आज खखड़ा के तमाम आपके दोस्तों के साथ सुनेंगे आप?

0: हेलो मनपसंद जी। नमस्कार।
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह।
0: जबलपुर में अशोक सिंह जी क्या करते हैं?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, अब आराम कर रहे हैं।
1: दीवाना हूँ 75 से, आपको बताया था।
0: क्या बात है। हाँ जरूर याद आ गई हमें, आप पुराने श्रोता हैं और रेडियो के दीवाने हैं, है ना? चलिए, बारिश हो रही है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्मी से राहत मिली आजकल हम लोगों को, है ना?
1: अपना अपना मजा है, लेना चाहिए।
0: लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात आप फरमाए। अशोक जी, आज इस खूबसूरत मौसम में किस गाने को हमारे तमाम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं?
1: सावन का महीना आया है, घटा से प्यास की आंधी बुझा जा रही है, वो आज मिलन की रात।
0: तो आइए अपने तमाम श्रोताओं के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं आई मिलन की रात फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम घटकन से बोलते हैं। नाम
0: घटकन से बोल रहे हैं, क्या नाम होगा आपका?
1: गोपी जी है। सब
0: गोपी जी है। और सब कैसा चल रहा है आपका?
1: ठीक है।
0: आप अपनी आवाज से थके हारे से क्यों नजर आ रहे हैं?
1: कहाँ करें, अब तो पहले गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी चला नहीं रहे हैं।
0: आप गाड़ी चला रहे थे पहले, अब गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो कुछ तो करते ही होंगे।
1: आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे परिवार जो है उसका भी नाम रखते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का नाम ले लीजिए और तब सुना जाएगा साथ में बैठ करके आपकी पसंद का गीत।
1: इलाके जी अंचल कुमारी हिमांशु दिवाली
0: अब ये बता दीजिए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं और किस फिल्म का?
1: फिल्म का गाना सुना।
0: दिलवाले फिल्म का कोई भी गीत आप सुनना चाहते हैं ना? हम और आप मिलकर सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: सर।
0: जी, प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब हैं?
1: जी सर, हम नोखा से बोल रहे हैं, राजकुमार।
0: राजकुमार जी।
1: जी सर।
0: और बताइए कैसे हैं पहले राजकुमार जी?
1: सब ठीक है सब।
0: कहाँ हैं, घर पर हैं या बाहर हैं?
1: घर पर हैं।
0: राजकुमार जी, आप घर पर हैं?
1: जी सर, हम गाना सुनते हैं, फिल्मी गाना।
0: अच्छा, फिल्मी गाना आप सुनते हैं?
1: हाँ सुनते हैं,
0: मनोरंजन के लिए।
1: जी।
0: और क्या करते हैं राजकुमार जी, और क्या करते हैं?
1: हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, इसका काम कुछ धीमा हो गया है।
0: हाँ, बरसात में इधर 2-3 दिन से जो हो रही है बरसात, तो उसमें आपका काम जरूर थोड़ा धीमा हुआ होगा, लेकिन खेती का काम तेजी पर होगा, है ना?
1: आया सावन झूम का गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आया सावन झूम का फिल्म का
1: ये गाना है, ये शमा तो जली रोशनी के लिए।
0: अच्छा, ये शमा तो जली रोशनी के लिए,
1: रफी का गाना है, धर्मेंद्र का फिल्म है।
0: जी, रफी साहब की आवाज में है ये गाना, बहुत बढ़िया गाना है। तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद जी, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ, बिलारी से करारवन जिला रोहतास।
0: क्या हाल चाल है? करघर में तो अब रोपनी की तैयारी हो रही है ना?
1: जी सर, रोपनी तो लग गया है, लेकिन अभी शुरुआत है, धुआंधार नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत चालू हो गया है।
0: होगा होगा विजय जी, धुआंधार भी होगा, बरसात भी उम्मीद करते हैं अच्छी होगी। और हम लोग
1: हाँ,
0: तब
1: नहर भी है ना हम लोगों के तरफ।
0: बिल्कुल नहर का इलाका है तो खेती अच्छी होगी ही।
1: अच्छा, धान का कटोरा कहा ही जाता है हमारे रोहतास जिला को। नहीं,
0: जी विजय कुमार जी, आप क्या करते हैं?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: अपने घर का खेती बाड़ी है वही करते हैं।
0: अन्नदाता हैं जिस पर कि, और अन्नदाता तो वैसे हैं जो जिस पर देश के सभी लोग निर्भर हैं, है ना? तो विजय जी, आज आप किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: रहेगा रसिया सुल्तान।
0: राजिया सुल्तान फिल्म का गीत विजय जी को सुनाया जाए, कौन सा गीत? जलता है बदन। क्या साहब, इस बरसात में भी जलता है बदन। हाँ बात सही कहे, बरसात में अगर कोई तनहा हो तो बदन जलेगा ही, है ना?
1: तनाव तो है, चलता है बदन, और
0: ठंडक
1: थोड़ा बारिश हो जाएगी तो ठंडक हो जाएगा।
0: हो जाएगी। हाँ आइए विजय जी, सुना जाए राजिया सुल्तान फिल्म का ये गीत।

तो अब इसी के साथ हेलो मनपसंद कार्यक्रम से आज अपने ओम प्रकाश को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। श्रोता दोस्तों, हर बुधवार को रिकॉर्डिंग की जाती है। वैसे तो हमारे तमाम श्रोता जानते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता नहीं जानते हैं, और हम चाहते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो और भी चाहते हैं नए श्रोता हमसे जुड़ें और हम नए श्रोताओं के भी हो जाएं। इसके लिए हमें बताना होगा, और हम बता रहे हैं कि हर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रिकॉर्डिंग की जाती है, और रिकॉर्डिंग का फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लें, 0618421130। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से नंबर दोहरा दें, 0618421130। अब इसी के साथ हेलो मनपसंद आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शनिवार को शाम 7:50 पर। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे फॉरेन फार्मेसी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में

0: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न

0: हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब

0: एक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर सौरभ में हम सुनवा रहे हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन। तो लीजिए सुनिए इनसे शहनाई पर बजाया राग कलावती।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई पर बजाया राग कलावती। सुरसरब कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कोचीपोले में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

जीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की इस शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल

गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे, ढोंगी।

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन,

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन,

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, क्षयकीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स।

जुबिन नोटियाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे कुमार की ये रचना। संगीता मीत ब्रोस का और एल्बम का नाम था कचिया कचिया। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम में एल्बम सॉन्ग्स, और अब हम सुनवा रहे हैं प्यार की नई किताब एल्बम से आबिर मुखर्जी की आवाज़ में राजन लालपुरी की ये रचना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इतना ना तुम याद आया करो। अभी आप सुन रहे थे इस एल्बम से प्रियंका सिंह की आवाज में संतोष उत्पत्ति की रचना। अब लीजिए सुनिए राज बर्मन की आवाज में रश्मि विरक की ये रचना। संगीत है जीत गांगुली का और एल्बम का नाम है हमको तो प्यार हो गया।

और अब रसरंग कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ब्रज साबरी और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में सिया सचदेव की ये रचना। एल्बम का नाम है इश्क हमारा रूहानी।

रसरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग्स। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने, और इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं सदाबहार फिल्मी नगमे।

अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हम पांच फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत हम सुन रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म से, और इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। मजरूह के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं चित्रपट तराने कार्यक्रम में सदाबहार फिल्मी नगमे। अब हम सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर की ये रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट तराने। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं आया सावन झुमके फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मन की आंखें। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म का ये गीत। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आया सावन झुमके। श्रद्धा, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और इसी के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के साथ आरम केंद्र से बोल रहे हैं।

आइए, कार्यक्रम विवरण में हम अब आपको जानकारी दे रहे हैं कल के हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

रोज की तरह कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8:00 समाचार प्रभात हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और 8:20 पर पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा पसंद आपकी।

कल सुबह 8:45 बजे प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे पटना केंद्र से, और सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका

कल सुबह 9:30 बजे और रात्रि 9:30 बजे हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:05 पर हमारा साहित्यिक कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे एक वार्ता और काव्य पाठ। वार्ता का विषय होगा कैमूर पहाड़ी के शैलाश्रय एवं शैलचित्र। वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी और दिनेश गर्ग का काव्य पाठ आप सुनेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत और सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

पूर्वाह्न 11 बजे से हम आपको सुनाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे योगवाणी और संध्या 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम में एक वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा धान की खेती कैसे करें। वार्ताकार होंगे डॉक्टर के प्रसाद। इसके अलावा कार्यक्रम में चर्चा होगी धान की रोपनी की नई तकनीक विषय पर और नसीहत होगी लोन का समय पर करें भुगतान। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और शाम 7 हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। शाम 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

के हलचल। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से।

कल रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत, और रात्रि 9:15 पर हम आपके लिए पेश करेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने।

तो कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अवसर मिलेगा जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार

आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इसमें रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें